0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों

0: यह कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent, which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Meanwhile, Netflix India said that during the meeting, the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. The streaming platform also announced the launch of the Netflix India Storytelling Initiative, an investment aimed at nurturing the next generation of India's creative talent through skilling and education partnerships with the Indian Institute of Creative Technologies and the National Film Development Corporation. India has urged Sri Lanka to cooperate in the early release of Indian fishermen and their boats detained by its authorities, while reiterating that a

0: தொடர்வது சமஸ்கிருத செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி சம்ப்ரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாச்சிகா ரிச்சா ஜா. अथ वार्ताः. संसदा षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमं सर्वोच्चन्यायालयस्य संशोधनविधेयकं पारितं यत् चर्चोत्तरं राज्यसभया तत् पुनः लोकसभायै प्रेषितम्. लोकसभया एतद् विधेयकं गत सोमवासरे एव पारितम्. अनेन विधेयकेन भारतस्य मुख्य न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या वर्तमानात् 33 इत्यतः 37 यावत् वर्धयितुं सर्वोच्चन्यायालयाधिनियमः 55-19-शततमः इत्यस्मिन् संशोधनं भवति. लोकसभया बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 20-26 इति पारितम्. अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं बैंक अभिलेखानां साक्ष्यसम्बद्ध नियमं आधुनिकीकांकीय बैंकिंग व्यवस्थया सह अनुकूलयितुमस्ति. विधेयके प्रावधानमस्ति यत् बैंक अभिलेखस्य वैद्युतिकः उतवा आंकिकीयाभिलेखः साक्ष्यरूपेण ग्राह्यः वैधः तथा विधितः प्रवर्तनीयः भविष्यति. लोकसभायाः कार्यम् अपराह्णे 2 प्रथम स्थगनानन्तरं पुनः समारब्धे सति केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एतत् विधेयकं प्रास्तौत्. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान् यत् भारते कथाकथनस्य समृद्धा परंपरा तथा सृजनात्मक प्रतिभायाः विपुलः निधिः वर्तते, यस्य उपयोगेन भारतं वैश्विक सामग्री निर्माणस्य प्रमुख केन्द्र रूपेण विकसितुं शक्यते. असौ सामाजिक संचार पटले संसूचितवान् यत् नवदिल्ल्यां नेटफ्लिक्स इत्यस्य सह मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा टेड सैरंडोस इत्यनेन सह असौ मेलनं कृतवान्. प्रधानमंत्री अवदत् यत् तयोः मध्ये भारतस्य मनोरंजन क्षेत्रस्य विशाल संभावना विषये अपि विस्तृतः विचार विमर्शः अभवत्. विश्वस्य प्रमुख सामाजिक माध्यम मञ्चानां मूल संस्थायाः मेटा इत्यस्य मुख्य कार्यकार्यधिकारिणा मार्क जुकरबर्ग इत्यनेन बाल यौन शोषण सामग्री तदनुषंगिक सामग्री कृत्रिम

0: पाई होगा।
1: नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तन्वी के साथ आज मैं हूँ नवीन सक्सेना। और तन्वी, जब जिंदगी की शुरुआत और यूं कहें कि अगर दिन की शुरुआत ऑल इज वेल से हो ना, तो ऐसा लगता है कि आज का दिन बेहद खास गुजरेगा। और जानते हैं, आज का दिन आपकी जिंदगी का एक अहम दिन बनने के लिए तैयार है, तो चेहरे पर मुस्कुराहट कर लीजिए, स्वागत कीजिए आज के दिन का। क्योंकि आज का दिन ऐसा होना चाहिए ना कि याद करें कि 2026 में वो दिन था जिसे हम कभी नहीं भूल सके, है ना तन्वी?
2: Totally, you have to make this day special. You have to make every moment of your life special. And yes, all needs to be well, no matter what, because life goes on.
1: Yes, life हमेशा चलती रहनी चाहिए चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। मुश्किलें आती हैं, चली जाती हैं। और तन्वी, जानते हैं, आज का दिन हमें विज्ञान की शक्ति, युद्ध की विभीषिका, न्याय व्यवस्था की विकास, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, न जाने कितने दिनों से और कितनी घटनाओं से आज का दिन जुड़ा हुआ है ना। तो फिर क्यों ना हम अपने सुनने वालों को कहें कि आज आप भी कुछ ऐसा कर जाइए कि आज का दिन आपको तमाम जिंदगी याद रखे।
2: Absolutely, this is our daily news magazine program Aaj Savere, and you all the listeners are tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 megahertz and the entire Akashwani network. Like Naveen said, we have a lot of information in store for all of you till 8 a.m. so stay tuned and listen to each and everything. Today is 6th of August, it's a Thursday, and a very happy Thursday.
1: तन्वी, कहानी एक ऐसी स्टोरी लाइन या कह लें कहानी, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि बहुत कुछ कह जाते हैं। और जानते हैं, भारत में कहानी कहने की जो परंपरा है ना, वो सदियों से चली आ रही है। हमने अपने नाना नानी से सुनी, दादा दादी से सुनी, फिर बड़े भाइयों से सुनी, अपने मम्मी पापा से सुनी। तो बस उसी कहानी कहने की जो परंपरा है ना उसी को लेकर आज हमारी पहली स्टोरी है।
2: Shall we begin?
1: बिल्कुल। Netflix ने Netflix India Storytelling Initiative शुरू करने की घोषणा की है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Netflix के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेंड्रोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रखी है और देश में ऐसे कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। कितना अच्छा लगता है ना कि जब एक कोई कहानी कह रहा है, आप उसे देख नहीं रहे, लेकिन वो कहानी कहते कहते आपको उस दुनिया में ले जाता है।
2: That's true. It actually

0: widens your imagination, you can be creative, and you can create characters and stories irrespective of thinking about any false narratives.
1: Jante hain jab kahani padhte padhte aap chhati pe kitab rakh ke so jate the to wo sote nahi the, aap us kahani mein doob jate the aur apne aap ko us character mein mehsoos karne lagte the. Ya phir aapke bade boodhe aapko kahani sunate the to aapko lagta tha ki shayad agar jungle ki kahani hai to main wo titli ban gayi hu, ya phir agar koi raja rani ki kahani hai to main raja ban gaya hu, hai na?
0: True.
1: Move karte hain agli story ki taraf.
0: Government has informed that it implements the Journalist Welfare Scheme, JWS, to provide one-time ex gratia relief on urgent basis to journalists and media personnel or to their families in the event of extreme hardship arising out of death, permanent disability, serious ailments and accident-related hospitalization. In a written reply in Lok Sabha, Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, said journalists accredited by Press Information Bureau, PIB, and state or UT governments, as well as non-accredited journalists, are covered under this scheme. Under the JWS scheme, government has provided financial assistance of 19 crore 41 lakh rupees to 456 media personnel or their families from 2014-15 to 2025-26. Journalists accredited with the PIB are also covered under the Central Government Health Scheme facilities across the country for themselves and also for their family members. This includes their treatment at government or CGHS empaneled private hospitals at CGHS rates. PIB issues accreditation for journalists in the National Capital Region, and the number of journalists accredited with PIB as on date is 1,786.
1: साहस और निस्वार्थ सेवा, ये मन में भाव लिए बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन उन्हें याद कम किया जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया. इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण और बचाव अभियानों में से एक था.
0: Niti Aayog has released a report titled Reimagining Care: Strategies for Empowering Caregivers in Viksit Bharat at 2047. The report envisions a comprehensive caregiving ecosystem as a key pillar of inclusive growth and social development while strengthening India's potential as a global hub for skilled caregiving professionals. Speaking on the occasion, Vice Chairperson Dr. Ashok Kumar Lahiri said, with the release of the report, Niti Aayog is addressing a strategic imperative that lies at the heart of India's long-term growth and social cohesion. He said the focus is on caregiving, not medical treatment, adding that care is much more encompassing than treatment.
1: तन्वी, अंतरराष्ट्रीय खबरों की बात करें तो पूरे विश्व की नजर है होर्मुज जल डमरू मध्य पर, और उसी को लेकर एक अच्छी खबर है. ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह यह समझौता हो सकता है और इससे होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी.
0: एंड मूविंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, इंडिया एंजॉयड अ मिक्स्ड डे एट द कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट इन असन यस्टरडे, विद 7 प्लेयर्स एडवांसिंग टू द सेकंड राउंड ऑफ वुमेन्स सिंगल्स, व्हाइल ऑल 6 मेन्स सिंगल्स प्लेयर्स क्रैश्ड आउट इन द ओपनिंग राउंड. इन द वुमेन्स सिंगल्स, अनमोल खर्ब, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता रामराज, अश्मिता चलीहा, इशारानी बरुआ एंड श्रियांशी वालीशेट्टी प्रोग्रेस टू द सेकेंड राउंड विद इम्प्रेसिव विक्ट्रीज. वुमेन्स डबल्स पेयर ऑफ सोनाली सिंह एंड रितिका ठाकर एंड मिक्स डबल्स कॉम्बिनेशन ऑफ श्रुति मिश्रा एंड ईशान भटनागर ऑल्सो एंटर द सेकेंड राउंड.
1: और अब रुख करते हैं आपके शहर की खबरों का. तो सबसे पहले नजर दिल्ली की खबरों पर. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 के मसौदे पर विचार किया गया. इसके माध्यम से कारोबार

0: शुरू करने और संचालित करने से जुड़ी मौजूदा जटिल प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाया जाएगा। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकल्स की तैनाती को लेकर एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और बात स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कल एक अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करना और स्वतंत्रता दिवस समारोह को बिना किसी घटना के संपन्न कराने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था।
1: Moving towards Chennai, a total of 1,000 new air-conditioned electric buses would be inducted into MTC in Chennai under the Gross Cost Contract. The announcement was given by Finance Minister N. Mary Wilson during his budget speech yesterday. 500 crore rupees has been earmarked to upgrade the electric vehicle infrastructure at bus depots, including charging facilities and related infrastructure. Nama Salai, an app has been introduced for people to register their complaints on rough roads. And we have some more news from Chennai itself. The School of Postgraduate Studies at Tamil Nadu Agricultural University has started the admission process for its master's degree programs for the academic year 2026-27. The online application window was opened yesterday. The institute offers master's program in 34 disciplines covering agriculture, horticulture, agricultural engineering, forestry, agricultural biotechnology, community science, food technology, agribusiness, environmental sciences and other emerging areas.
0: बात करते हैं महाराष्ट्र की तरफ की। महाराष्ट्र में डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के साथ उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अथर्व शिंदे ने बताया कि 32 मेडिकल कॉलेज और मुंबई नगर पालिका के अस्पतालों में हड़ताल चल रही है और उन्होंने आगाह किया कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भारत की पहली AI आधारित कौशल जनगणना रिपोर्ट जारी की और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दान संग्रह में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट की 5 वर्षीय विशेष लेखा परीक्षा का आदेश दिया है।
1: एंड फ्रॉम मुंबई लेट्स मूव टुवर्ड्स बेंगलुरु। The Bangalore Development Minister Krishna Bairi Gowda has announced Freedom Haba, which involves public participation in the Independence Day celebration on 15th of August. Announcing this in Bangalore, the minister informed that in the day-long celebration, people from Karnataka and other parts of India will showcase their art, culture, heritage and even ethnic wear. To be themed around Bangalore, our home, all those from across the country who have chosen Bangalore as their home have been invited to participate in the citizen-led Haba, which in Kannada means festival. After the formal Independence Day ceremony at the Field Marshal Manekshaw Parade Ground, the celebrations will shift to the iconic Vidhan Saudha.
0: बात कोलकाता की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी की 102वीं पुण्यतिथि आज मनाई जाएगी। इस अवसर पर कोलकाता में विभिन्न समारोहों के माध्यम से उनकी विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने कोलकाता निगम के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण अंततः वो कांग्रेस से अलग हो गए थे।
1: And moving towards Hyderabad, Union Minister Kishan Reddy has raised serious concerns over rising food adulteration cases in Telangana, revealing that harmful substances like textile dyes, artificial colours, talcum powder and rice bran oil are being mixed into spices to boost their colour, weight and even market value. He said the central government, through FSSAI, has notified 17 primary and 5 referral laboratories under the Hyderabad zone covering Telangana and Andhra Pradesh to test food quality. Mr. Reddy said the centre has released 11.68 crore rupees to Telangana under the strength

0: strengthening of food testing system scheme with an additional 23.37 crore rupees also approved.
1: तनवीन शहरों की खबरें तो हमने बता दी, लेकिन एक खबर जो यहाँ के लोगों के लिए सबसे जरूरी है वो ये कि जब वो घर से बाहर निकलें तो फिर मौसम का मिजाज कैसा हो। तो चलिए दिल्ली के लोगों के मौसम के बारे में हम बता देते हैं। आज ही सुबह बहुत भीगी हुई है दिल्ली की, हो ना हो आपके इलाके में आपके घर के बाहर तेज मूसलाधार या फिर रिमझिम बारिश जरूर हो रखी होगी। तो सावन की इस भीगी सुबह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम करते हैं और मौसम की सैर पर निकलते हैं। दिल्ली में आज बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, हल्की और मध्यम वर्षा की फुहारें दिन को तरोताजा रखेंगे, ऐसा मौसम विभाग कहता है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गर्मी की तपिश कम होगी लेकिन हवा में नमी का एहसास बना रहेगा। उधर मुंबई का रुख करें तो अरब सागर से उठती नम हवाएं मानसून की फुहारें आज भी माया नगरी का साथ निभाएंगी। बीच बीच में थोड़ी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम और भी सुहाना बनाएंगी समुद्र की हवाएं। और अब पहुंचते हैं कोलकाता। तन्वी, हुगली के तट पर बसा ये शहर आज भी बादलों की चादर में लिपटा नजर आएगा। रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश यहाँ भी होगी और कोलकाता की रौनक को थोड़ा सा और बढ़ा देगी। यानी कुल मिलाकर करें कि तीनों बड़े महानगरों में आज पानी की बूंदें मुस्कुराने वाली हैं।
0: एंड द अदर थ्री सिटीज दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इवन दे आर गोइंग टू विटनेस सर्टेन पार्टली क्लाउडी स्काई। सो अबाउट चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर इज लाइकली टू बी अराउंड 28 डिग्रीज व्हाइल द मैक्सिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 35 डिग्रीज। एंड इफ वी टॉक अबाउट बेंगलुरु, इट्स ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ light rain or even thunder showers. The minimum temperature is likely to be around 21 degrees and the maximum temperature is expected to be around 30 degrees Celsius. Now, Hyderabad is also expected to have partly cloudy sky with haze. The minimum temperature is likely to be around 25 degrees while the maximum temperature is expected to be around 35 degrees Celsius. So we can say that monsoon is here for each and every city.
1: बिल्कुल। और तन्वी, लिखने वाले भी अपनी कॉलम से क्या खूब लिखते हैं। देखिए किसी ने क्या लिखा है कि देखिए बारिश की बूंदें हैं बड़ी दूर से चलकर आई हैं, जरा बाहर निकलिए और इनका मजा लीजिए, है ना। लेकिन जब ये बारिश की बूंदें तेज हो जाए तो मजा थोड़ा सा खराब होता है, इसलिए छतरी हमेशा अपने साथ रखिए।
0: एंड इफ यू आर इनडोर्स मेबी यू कैन एंजॉय टी एंड पकौड़ास विद इट।
1: बिल्कुल। और कहते हैं कि अपनी बालकनी के अंदर अगर आप बैठे हैं और बारिश के फुहारे हैं, चाय का कप आपके साथ में है, सुबह पकौड़े खाएंगे, चलेगा बारिश में लेकिन बहुत खूबसूरत लगेगा। चलिए आज सवेरे का अब एक और पन्ना पलटते हैं और मैं और तन्वी आपको बीते हुए कल में लेके जाते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों है आज का दिन खास। तन्वी, नज़र सबसे पहले विश्व को झकझोर देने वाली घटना पर। सबसे पहले बात उस घटना की जिसने पूरी मानव सभ्यता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए होगा या विनाश के लिए। 6 अगस्त 1945, दूसरा विश्व युद्ध का अंतिम चरण, सुबह के लगभग 8:15, अमेरिका के B-29 बमवर्षक विमान एनोला गे ने जापान के शहर हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया और इस बम का नाम था लिटिल बॉय। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग और विकिरण की चपेट में आ गया, हजारों लोग तुरंत मर गए और आने वाले महीनों और वर्षों के विकिरण के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए।
0: That was a tragic incident, and when we still think about it, it gives us shivers. And today is a special day because today is International Day of Awareness of the Special Development Needs and Challenges of the Landlocked Developing Countries. It is being observed today globally. Landlocked Developing Countries, LLDCs, lack territorial access to the sea, leaving them dependent on transit neighbors for a route to world markets. This geographic disadvantage drives up transport costs, introduces avoidable delays, and exposes LLDCs to any political or economic instability along those corridors. The first celebration of this day took

0: place during the third conference on landlocked developing countries in 2025, which was just last year.
1: आज ही के दिन सन 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और ये भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है.
0: And going a little back, let's talk about 1825, where Bolivia declared its independence from Spain.
1: अब चलते हैं वर्ष 1914 की ओर. यूरोप में तनाव अपने चरम पर था. गठबंधनों की राजनीति, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और सैन्य तैयारी ने पूरे महाद्वीप को युद्ध के मुहाने पर लाखड़ा किया था. 6 अगस्त 1914 ऑस्ट्रिया और हंगरी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी.
0: Well, before 1914 comes 1906, Naveen. The nationalist English language weekly newspaper, Vande Mataram, was first published from Kolkata by Bipin Chandrapal. And later, Sri Aurobindo took over the publication and turned it into a daily newspaper. And moving further, well, why are we going further when we can actually listen to Vande Mataram?

0: तन्वी, सृष्टि का सृजन अपने आप में एक अजूबा है और बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं, लेकिन इंसान ने टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए जन्म की प्रणाली का विकास करने के इस करिश्मे में भी एक और कड़ी जोड़ दी। आज ही के दिन सन 1986 में भारत के पहले वैज्ञानिक रूप में मान्यता प्राप्त टेस्ट ट्यूब शिशु हर्षा का जन्म हुआ था।
1: In 2012, NASA's robotic vehicle Curiosity, also called Mars Science Laboratory, landed on Mars and soon began transmitting images of the planet's surface.
0: तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से, और अब याद करते हैं उन महान व्यक्तियों को जो कहीं ना कहीं आज के दिन से जुड़े हुए हैं और हमें प्रेरणा देते हैं। आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ, पर्यावरणविद, चित्रकार, फोटोग्राफर और दस्तावेजी फिल्मों के निर्माता रॉबिन बैनर्जी की। असम के घोलाघाट में रहने वाले रॉबिन बैनर्जी ने 32 डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन्हें वाइल्ड लाइफ को बचाने सहेजने के लिए खुद को इस तरह से समर्पित कर दिया कि आपने मेडिकल प्रोफेशन को बिल्कुल छोड़ दिया। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति रॉबिन बैनर्जी के इसी समर्पण के लिए उन्हें 1971 में पद्मश्री से नवाजा गया। उन्हें अपनी वाइल्ड लाइफ फिल्मों के लिए 14 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बहुत ही खूबसूरत सा एक गीत है जो समर्पित है उनको।

0: तन्वी, ये मूवी रामलीला आई थिंक, और इसमें बहुत अच्छे से इस गाने को उन्होंने गाया भी है, और कहते हैं कि होनहार बिरवान के हो चीखने पा, तो ये वही कहावत है।
1: एब्सोल्युटली ट्रू, एंड दिस इज सच अ फन सॉन्ग टू बी प्लेड इन द मॉर्निंग शो।
0: और अब बात सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। आज ही के दिन पेंसिलिन की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म हुआ था, और वो वर्ष था 1881।
1: And today is also the birthday of Abhishek Kapoor, an Indian film director, former actor, writer and producer who has worked in Hindi cinema. So he's known for his multiple movies, be it Rock On, Kai Poche, Fitur, Kedarnath and many more. Let's enjoy this beautiful track from Kai Poche titled Shubharambh.

0: The Village, Unbreakable, The Happening, The Last Airbender, Split, Knock at the Cabin, and more. Let's hear an interview of his where he's talking about on making horror movies and how attempting this genre was a challenge.
1: I guess when we put out, you know, Sixth Sense, it was that was a really unusual moment because there wasn't a ton of mainstream. And then that year we had Blair Witch and Sixth Sense really within 2 months of each other, which kind of, whoa, this is mainstream. I always felt like it was the scary genres of fun. John, we'd always go to the video store and look for those movies. But approaching it with the highest level cinema...
2: आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको बेहद बेहद पसंद आया होगा। तो मैं और तन्वी आपको नई सुबह और अपने साथ नए अवसर, नई उम्मीदों और नई मंजिलों की ओर बढ़ने के साथ जो सुबह आई है उसके साथ छोड़े जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत चुनकर लाए हैं, एंजॉय कीजिए और दिन भर इसे गुनगुनाइए।

0: Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a wonderful day.
1: Namaskar.
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं घर में दो दो फ्रिज हैं फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है जीरो मैंने पूछा तो भतीजा बोला चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर
4: हर घर सूर्य घर
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं हैं मदद बस एक कॉल दूर है
6: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं
7: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को भारत के संस्कृति को भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते
6: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है

0: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
1: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
0: एग्रीकल्चर एंड डिजिटल सर्विसेज।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3,972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए ये दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश

0: सचिव अरुणी रण राजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि होर्मोज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह होर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश, जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से PM मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया

0: हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ஆகாஷ்வாணி பிரசன்ஸ் மார்னிங் நியூஸ். குட் மார்னிங், ஐ எம் ஷகுன் சோப்ரா. த ஹெட்லைன்ஸ். பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி சேஸ் இந்தியாஸ் எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி பூல் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் டேலண்ட் கேன் பி லீவரேஜ் டு ஸ்ட்ரெங்தன் நேஷன்ஸ் பொசிஷன் ஆஸ் குளோபல் ஹப் ஃபார் கான்டென்ட் கிரியேஷன். Government extends 10 years of Cabinet Secretary T.V. Somnathan and Union Home Secretary Govind Mohan by 1 year. Students intensify their protest over irregularities in recruitment exams in Jharkhand. Uttarakhand government puts agencies on high alert following warning of heavy rain in the state. New Delhi urges Colombo to cooperate in early release of Indian fishermen detained by Sri Lankan authorities. And India safely moves 60 ships through Strait of Hormuz during Gulf crisis. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Addressing a conference of content creators in New Delhi last year, Mr. Modi called upon them to share India's stories to the world.
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें, हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: Meanwhile, Netflix India said that during the meeting, the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. The streaming platform also announced the launch of the Netflix India Storytelling Initiative, an investment aimed at nurturing the next generation of India's creative talent through skilling and education partnerships with the Indian Institute of Creative Technologies and the National Film Development Corporation. The government has extended the tenure of Dr. T.V. Somnathan as the Cabinet Secretary by 1 year. The Appointments Committee of the Cabinet, or ACC, has approved the 1 year extension in the service of Dr. T.V. Somnathan as Cabinet Secretary beyond 30th of August 2026. The ACC has also approved the 10-year extension of Govind Mohan as the Home Secretary by 1 year. In the Lok Sabha, the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 is listed for consideration and passing in today's business of the House. The bill seeks

0: जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सैंड्रोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा भी की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉक्टर सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत के संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। यह विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़े मुद्दों को लेकर निर्माण एजेंसी और इंजीनियरों तथा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रभावित सड़क खंड को ठीक करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपाय किए गए हैं। सड़क मार्ग के पूरी तरह ठीक होने तक टोल को स्थगित रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे के 64 किलोमीटर सड़क खंड पर पिछले महीने की 26 तारीख को फिसलन महसूस की गई थी। सभी दोषियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके अंतर्गत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दे दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अथर्व शिंदे ने बताया कि 32 मेडिकल कॉलेज और मुंबई नगर पालिका के अस्पतालों में हड़ताल चल रही है। उन्होंने आगाह किया कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर आशुतोष आदि ने कहा कि बेहद गंभीर मामलों का इलाज जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावट पर गंभीर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि रंगों, पाउडरों और धान की भूसी के तेल की मिलावट मसालों में की जा रही है ताकि उनके रंग बेहतर दिखें और वजन तथा बाजार भाव बढ़ जाएं। श्री रेड्डी ने तेलंगाना सरकार से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर तुरंत और सख्त कदम उठाए क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से सीधे तौर से जुड़ा मुद्दा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर कंटेंट क्रिएशन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया। भारत ने पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा बंद करने और सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जलडमरू मध्य पार किया और ईरान ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य पर ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसे कई कंटेंट क्रिएटर हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। श्री विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसा नायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्य, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
2: इस संभावित समझौते से होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह होर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी।
3: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीकास।
4: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
3: एग्रीकल्चर एंड डिजिटल सर्विसेज।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका और दुनिया के

0: दूसरे हिस्सों के पिछड़े देशों के प्रति भारत की वचनबद्धता इस बात से प्रकट होती है कि अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता भारत की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में दी गई थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने क्षेत्र से संचालित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ विश्वसनीय प्रमाण योग्य और कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: तथाकथित यौम इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। भारत ने तथाकथित यौम इस्तेहसाल मनाने के पाकिस्तान के प्रयासों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को किए गए संवैधानिक परिवर्तन पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। इन निर्णयों ने क्षेत्र के लोगों के लिए अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक विकास, सुशासन और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण लाया है। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा झूठ फैलाने के हताश प्रयास केवल मानवाधिकारों के अपने दयनीय रिकॉर्ड और आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में उसकी स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान हटाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्तमान में जम्मू कश्मीर में मौलिक अधिकारों के क्रूर दमन का साक्षी है। हाल के हफ्तों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण नागरिक अधिकार विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए घातक हिंसा, लक्षित हत्याओं और कठोर प्रतिबंधों का सहारा लिया है। प्रवक्ता ने बताया कि निहत्ते नागरिकों के खिलाफ इस तरह की राज्य प्रायोजित हिंसा पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठान के घोर पाखंड को उजागर करती है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: ब्रिटेन में कश्मीरी समुदाय के सदस्यों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के समर्थन में ब्रैडफोर्ड में प्रदर्शन किए। समुदाय ने संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति की मांग के प्रति भी समर्थन व्यक्त किया। आयोजकों का कहना था कि रैली का उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार की बिगड़ती स्थिति की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना था। जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। यमन के हूती ग्रुप ने अदन की खाड़ी में सऊदी के एक तेल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। हूती से सैन्य प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह हमला सऊदी अरब की नाकेबंदी के विरोध में किया गया। अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना के कैसवेल काउंटी में एक घर में हुई गोलीबारी में कई लोगों की मौत की खबर है। संदिग्ध हमलावर समेत परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई और एक चौथे रिश्तेदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य यूरोप के देशों में एक बार फिर भीषण गर्मी पड़ रही है। स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया में कल का दिन सबसे गर्म रहा। स्लोवाकिया के कैमनिका रोनोम शहर में तापमान 41.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं ऑस्ट्रिया में बड़े डाइचे ऑल्टनबर्ग में तापमान 41.2 डिग्री रहा। चेक गणराज्य और हंगरी में भी अब तक का उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भीषण गर्मी के कारण जंगलों में आग लग गई है और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। यूरोप की जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म हो रहा महादेश है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन 1 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार जिसको उपयुक्त देश को वैश्विक स्तर पर कंटेंट क्रिएशन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया। भारत ने पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा बंद करने और सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जलडमरू मध्य पार किया और ईरान ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य पर ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்தது 100.1 MHz FM கோல்டு வழங்கிய சுகமான ராகங்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெய்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே நிகில் குமார். लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के लिए निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर

0: चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने श्री टेड के साथ भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजिता हेरात और विदेश सचिव अरुणी राजा से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में खाद्य पदार्थों में बढ़ती मिलावट पर गंभीर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि रंगों, पाउडरों और धान की भूसी के तेल की मिलावट मसालों में की जा रही है ताकि उनके रंग बेहतर दिखें और वजन तथा बाजार भाव बढ़ सकें। श्री रेड्डी ने तेलंगाना सरकार से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर तुरंत और सख्त कदम उठाए क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से सीधे तौर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज कक्षा 12 तक के स्कूल बंद हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister said in a social media post that India has a rich tradition of storytelling, an extraordinary pool of creative talent, which can be leveraged to strengthen the country's position as a global hub for content creation. Mr. Modi said that they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector.
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत के अपने

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு ரசித்தது மெல்லிசை. தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
2: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
1: इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई। इस दौरान मंत्रियों ने सदन के पटल पर कई दस्तावेज रखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन ये व्यवस्थित और सार्थक ढंग से होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। मौसम विभाग ने बताया है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्य

0: मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। हालांकि तेज बारिश के कारण भुवनेश्वर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में फिर से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। आशीष ने पुरुषों के समूह ए में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69.87 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत ने 52.58 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए समूह ए में छठा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the lower house paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Lok Sabha Speaker Om Birla stated that today marks 81 years of the tragic atomic bombings in Japan.
2: 81 years ago, in Hiroshima and Nagasaki cities of Japan, on 6th and 9th August 1945, atomic bombs were dropped. In this terrible tragedy, lakhs of innocent people lost their lives and innumerable people were seriously injured. This house reaffirms its commitment to freeing the world from weapons of mass destruction.
1: The House also observed silence in memory of the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah on the issue. The Speaker said question hour is an important part of the proceedings, which provides every member an opportunity to raise issues. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has been adjourned till 2:15 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House reassembled after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the question hour amid opposition uproar. Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat replied to a question related to tourism infrastructure in mountains and borders. He said his ministry has advised states to develop a coordinated grid system to ensure adequate medical preparedness, necessary precautions and timely evacuation facilities in case of emergencies. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal replied to a question related to posts and vacancies in courts. During the question hour, the opposition members continued with their sloganeering. As the pandemonium continued, the chairman adjourned the house till 2:15 p.m. BJP MP and chairperson of the Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology, Nishikant Dubey, has termed Meta CEO Mark Zuckerberg's apology a victory for India's laws, constitution and parliament. Talking to reporters,

0: is 18 players along with two alternate players and will be led by midfielder Khayyam Shleima Chanu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha resumes proceedings amid opposition ruckus over several issues. Rajya Sabha adjourned till 2:15. Bombay High Court convicts former Tehalka editor Tarun Tejpal in 2013 sexual assault case. Amarnath Yatra resumes after day-long suspension due to security reasons. Orange alert issued for very heavy rainfall over Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. Hockey India announces 18-member junior women's team for AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August 30th. Javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, storm into finals of World Athletics Under 20 Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
2: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
1: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
3: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
1: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा

0: हुआ एक रिपोर्ट।
1: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा लिंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
2: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye ji raha hoon. और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, that should be the commitment.
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
3: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

0: इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
1: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है, क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। से इश्फाक शाह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
2: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गडेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
3: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
2: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित, पोषित, कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर

78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसला

0: 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30 ஆகாஷ்வாணி நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட்.

0: திரைகானம் கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கி சாத் மே கனகலதா. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई. नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई. आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं. राज्यसभा में भी आज हंगामे की स्थिति रही. इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया. पर्यटन मंत्री गर्जेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य

0: और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्न का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर बोलने की अपेक्षा की जाती है।
1: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया। न्यायालय की गोवा बेंच की खंडपीठ ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी करार दिया। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा सुनाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मॉनसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक में बल को और मजबूत करने तथा इसकी समग्र प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि प्रादेशिक सेना नागरिक सैनिक अवधारणा का जीता जागता उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के स्थगन के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष देश भर से अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
2: अब तक 470,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है, क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में दो खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। मिडफील्डर खैदम शलेमा चानू टीम की कप्तानी करेंगी। मुख्य कोच टिम वाइट के निर्देशन में टीम इस टूर्नामेंट की तैयारियों में जुट गई है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने फाइनल में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये सब आचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Lok Sabha has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The bill will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on the 5th of June this year. The bill further exempts foreign institutional investors and the Bank for International Settlements from paying income tax on interest earned on investments in carbon securities. The exemption will apply to income arising on or after the 1st of April this year. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled at 2 p.m. after the first adjournment. The bill was passed amid din without any discussion amid repeat.

0: மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதல் கட்டத்தில் ஹவுஸ் லிஸ்டிங் மற்றும் ஹவுசிங் சென்சஸ், அதாவது உங்கள் வீடுகள் கணக்கிடப்படும். வாருங்கள், உங்கள் பங்கேற்புடன் இதை வெற்றி பெற செய்வோம் மற்றும் வளர்ந்த இந்தியா 2047 நோக்கி மற்றொரு அடியை எடுத்து வைப்போம்.
1: நேயர்கள் இணைந்திருப்பது 100.1 MHz சென்னை FM கோல்ட் அலைவரிசையில். தேநீர் நேரம் இது.
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आमंत्रित करता है आवेदन इन पदों के लिए प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी रसायन पदों की संख्या 32 प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी बॉयलर पदों की संख्या 6 प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी यांत्रिकी पदों की संख्या 4 प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी विद्युत पदों की संख्या 10 प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी उपकरण पदों की संख्या 9 प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी सामग्री 1 पद प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी सिविल 1 पद प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी अग्निशमन 1 पद प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी सीसी लैब 1 पद प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी 2 पद प्रबंधन प्रशिक्षु कुल 5 पद प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी राजभाषा 2 पद प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी वित्त 10 पद और प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी विपणन कुल 10 पद। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट www.rcfltd.com। वेबसाइट पर जाकर भर्ती अथवा रिक्रूटमेंट सेक्शन को क्लिक करके आवश्यक जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। सह प्राध्यापक 1 पद, सहायक कुल सचिव 1 पद, रिसेप्शनिस्ट सह टेलीफोन ऑपरेटर 1 पद और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 1 पद। आवश्यक शैक्षिक एवं वांछनीय योग्यता, अनुभव और सामान्य निर्देशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट www.nieperkolkata.edu.in। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 1 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। वरिष्ठ परामर्शदाता विश्व विज्ञान 2 रिक्तियां, परामर्शदाता विश्व विज्ञान 1 पद, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी विश्व विज्ञान 2 रिक्तियां और तकनीकी अधिकारी विश्व विज्ञान 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट ppqs.gov.in। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में ये पद रिक्त हैं। वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता 7 पद, पर्यावरण अभियंता 15 पद, सहायक पर्यावरण अभियंता 11 पद, अपर निदेशक वैज्ञानिक ई 1 पद, वरिष्ठ वैज्ञानिक L2 1 पद, वरिष्ठ वैज्ञानिक L1 2 पद, वैज्ञानिक B 1 पद, वैज्ञानिक सहायक 4 पद, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 5 पद, सहायक विधि अधिकारी 1 पद, विधि सहायक 5 पद और सिस्टम एनालिस्ट 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की वेबसाइट www.dpcc.delhigovernment.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फिर चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे उनसे क्या लाए हैं हमारे लिए आज वो कुछ खास, और इसके अलावा खेल गतिविधियों पर तो रहती है हमारी बराबर नजर, फिर याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक में आज आपके साथ हूं मैं मुनीश शर्मा, और हमारे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक नमस्कार।
2: हेलो मुनीश, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ ऑन द एफएम गोल्ड नेटवर्क।

0: पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण पाल तेजपाल को ठहराया है दोषी।
1: अमरनाथ यात्रा रिज्यूम्स आफ्टर डे लॉन्ग सस्पेंशन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस।
0: उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
1: हॉकी इंडिया अनाउंसेस 18 मेंबर जूनियर वुमेन्स टीम फॉर AHF एशिया कप 2026 टू बी हेल्ड इन मोची चाइना फ्रॉम ऑगस्ट 30।
0: और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में बना ली है अपनी जगह।
1: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, in a series of topics that we'll be discussing, first, we will talk about a day that reminds the world of one of the darkest chapters in human history, Hiroshima Atomic Anniversary. And today, Munish, August 6th is Hiroshima Day.
0: Bilkul sahi, Abhishek. 81 baras pehle, 1945 mein isi din, हिरोशिमा में एक आम सुबह एक ऐसी त्रासदी में बदल गई थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे और शहर में एक और राम दिन की शुरुआत हो रही थी, लेकिन सवेरे 8:15 बजे तक ही
1: इन अ सिंगल फ्लैश ब्राइटर देन द सन एवरीथिंग चेंज्ड। द यूएस B-29 बॉम्बर इनोला गे ड्रॉप्ड द एटॉमिक बॉम्ब नोन एज लिटिल बॉय over Hiroshima. Within seconds, much of the city was destroyed.
0: Hazaron logon ki foran mauke par hi maut ho gayi. 1945 ke aakhir tak dhamake buri tarah jalne aur radiation ki wajah se kareeb 1,40,000 logon ki maut ho chuki thi. Aur phir 3 din baad Nagasaki par ek aur parmanu bomb giraya gaya.
1: These bombings remain the only use of nuclear weapons in warfare. They brought World War II to an end, but at an enormous human cost that continues to remind the world of the devastating impact of war.
0: दोस्तों, दुनिया भर में लोग हर साल हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। इसका मकसद न सिर्फ उन लोगों को याद करना है जिनकी जान गई थी, बल्कि शांति और परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराना है।
1: And this year's theme is remembrance, responsibility, and resilience. Three powerful words that encourage us to remember the past, take responsibility for protecting peace, and build a future based on hope rather than conflict.
0: Hiroshima शहर में आज सवेरे सालाना शांति स्मारक समारोह आयोजित किया गया। बमबारी के ठीक समय सुबह 8:15 बजे एक पल का मौन रखा गया और स्मारक के सामने 353,000 से ज्यादा पीड़ितों के नामों वाले एक रजिस्टर भी रखा गया।
1: One of the most moving symbols in Hiroshima is a flame of peace. It has been burning continuously since 1964 and will remain lit until every nuclear weapon in the world is eliminated.
0: एक और अहम आवाज है हिबाकुशा की। ये नाम परमाणु बम हमलों से बचे लोगों को दिया गया है। दशकों से वो अपनी कहानियां साझा करते आ रहे हैं और युवा पीढ़ी को याद दिलाते हैं कि कैसे हर ऐतिहासिक घटना के पीछे असल लोग, परिवार और उनके सपने होते हैं।
1: The message is simple yet powerful. Never again. It also raises an important question for all of us. How do we preserve peace in today's world?
0: शायद इसकी शुरुआत समझदारी से, मतभेदों का सम्मान करने से, हिंसा के बजाय बातचीत का रास्ता चुनने से और इतिहास से मिले सबक को याद रखने से होती है।
1: Peace starts with individuals in our homes, schools, workplaces and communities. Every act of kindness, tolerance and compassion contributes to a more peaceful world.
0: Hiroshima Divas manate hue, aaiye hum un logon ko shraddhanjali dein jinhone apni jaan gawai, bache hue logon ka saath dein aur manavta ke prati apni samuhik pratibaddhata ko dohraye.
1: And Munish, history cannot be changed, but the future can certainly be shaped.
0: Bilkul sahi kaha aapne Abhishek. Aur अब आते हैं हम अपने अगले विषय पर। हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों आज, जो शहरों को बदल रही है, और हमारा विषय है आज का अर्बन गार्डनिंग, यानी शहरी इलाकों में हरियाली उगाना। जब हम बगीचों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे मन में बड़े बड़े आंगन या विशाल पार्कों की तस्वीरें उभरती हैं,

0: इन आज अपार्टमेंट्स छतों बालकनियों और यहां तक कि खिड़कियों पर भी बागीचे पनप रहे हैं। अर्बन गार्डनिंग ये साबित कर रही है कि हरियाली उगाने के लिए आपको बहुत बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है।
1: Yes, and absolutely, Munish. And in fact, urban gardening is simply the practice of growing plants, vegetables, herbs or flowers in cities where space is limited. Whether it's a few pots of basil on a kitchen window or a rooftop full of vegetables, every little effort counts.
0: और अब तो ये सिर्फ एक शौक से कहीं ज्यादा बनता जा रहा है। कई परिवारों के लिए तो एक जीवन शैली है। सोचिए आप अपनी बालकनी में जाते हैं और चाय के लिए ताज़ा पुदीना या सलाद के लिए टमाटर तोड़ लाते हैं। इससे ज्यादा ताजा आखिर और क्या हो सकता है, क्यों अभिषेक?
1: वेरी ट्रू मुनीश। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फ्रेश प्रोड्यूस, अर्बन गार्डन्स आल्सो इंप्रूव एयर क्वालिटी, रिड्यूस हीट एंड मेक अ सराउंडिंग्स मोर ब्यूटीफुल। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑक्सीजन एंड क्रिएट कूलर ग्रीनर स्पेसेस इन द मिडल ऑफ बिजी सिटीज।
0: लेकिन एक और फायदा है जिसके बारे में बहुत से लोग शायद नहीं जानते। गार्डनिंग असल में हमारी मानसिक सेहत के लिए भी अच्छी होती है। रोजाना बस कुछ मिनट पौधों की देखभाल करने से तनाव कम हो सकता है, मूड बेहतर हो सकता है और हम प्रकृति से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं।
1: एग्जैक्टली मुनीश, एंड स्टार्टिंग एन अर्बन गार्डन डजंट रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट।
0: बिल्कुल नहीं। आप रिसाइकल की हुई बोतलों, पुरानी बाल्टियों, टूटे मग या बगैर इस्तेमाल वाले कंटेनरों से भी शुरुआत कर सकते हैं। उनमें मिट्टी भरिए, कुछ बीज डालिए और बस आप पौधे उगाने के लिए तैयार हैं।
1: Absolutely, and for beginners, herbs like coriander, mint, basil, and spinach are easy to maintain. Tomatoes, chilies, and leafy vegetables also grow well in pots with proper sunlight.
0: और अब धूप की बात करें तो बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं कि कितनी धूप काफी है। ज्यादातर सब्जियों को रोजाना लगभग 6 घंटे की धूप की जरूरत होती है। अगर आपकी बालकनी में सवेरे अच्छी धूप आती है तो ये अक्सर सबसे अच्छा होता है। और नियमित रूप से पानी देना न भूलें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचिए क्योंकि इससे जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है।
1: एंड अनदर एक्साइटिंग ट्रेंड इज कंपोस्टिंग मुनीश। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे वेजिटेबल पिल्स एंड फूड स्क्रैप्स, मेनी हाउसहोल्ड्स आर टर्निंग किचन वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट फॉर देयर प्लांट्स।
0: और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हुए कचरा कम करने का एक शानदार उदाहरण है। ये एक आसान कदम है जिससे बगीचे और पर्यावरण दोनों को काफी फायदा होता है।
1: एंड अर्बन गार्डनिंग रिमाइंड्स अस दैट मीनिंगफुल एनवायरमेंटल चेंज डजंट ऑलवेज बिगिन इन फॉरेस्ट्स। इट कैन बिगिन राइट आउटसाइड अ फ्रंट डोर, ऑन अ बालकनी, टेरेस और इवन अ सनी विंडमिल। एंड नाउ वी टेक यू टू मुंबई वेयर क्रिएटिविटी, कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस हैव कम टुगेदर ऑन वन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। The occasion is a BRICS Waves Bazaar, a major international marketplace for the creative economy.
0: बिल्कुल सही दोस्तों, और इस इवेंट में BRICS के सदस्य और सहयोगी देशों के 500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और इनमें सिर्फ फिल्म निर्माता या कलाकार ही नहीं है बल्कि नीति निर्माता, ब्रॉडकास्टर, OTT प्लेटफॉर्म, निवेशक, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी कंपनियां, सांस्कृतिक संस्थान और क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर भी शामिल हैं।
1: So listeners, what exactly is a BRICS Waves Bazaar?
0: दरअसल इसे एक ऐसी जगह के तौर पर सोचिए जहां आइडिया और मौके एक दूसरे से मिलते हैं। इसे क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जैसे फिल्म और टेलीविजन से लेकर डिजिटल मीडिया, एनिमेशन, गेमिंग, म्यूजिक और नई टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया गया है।
1: And in today's world, the creative economy is becoming a major contributor to growth and employment. It is no longer limited to entertainment alone. Innovation, digital content and intellectual property are driving new businesses and creating new jobs.
0: बिल्कुल, BRICS Waves Bazaar का मकसद बातचीत, ज्ञान के आदान प्रदान, बिजनेस नेटवर्किंग और सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देकर BRICS देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करना है।
1: The two-day event features conferences, keynote addresses, panel discussions and business networking sessions. Experts from across the world are discussing how creativity can fuel economic development.
0: Kuch mukhya vishayon mein, antarrashtriya co-production, content financing, digital transformation, intellectual property rights, mahilaon ke netritv wali udyamita, ubharti hui takniken aur south-south sahyog shamil hain.
1: And one of the biggest attractions is the Creators Hub. It is an exhibition space where startups, technology companies, production studios and creative enterprises are showcasing their latest

0: Vala Sadhya is a unique offering by devotees of Lord Parthasarathi and is organized by the Valiyodha Seva Sangam in association with the Travancore Devaswam Board.
1: साठ दिनों तक दरअसल इस चलने वाले त्योहार के दौरान पंपा नदी के किनारे बसे गांवों से पारंपरिक स्नेक बोट्स जिन्हें पल्लियोडम कहा जाता है चप्पू चलाने वालों के साथ आती हैं। मंदिर में होने वाले भव्य पारंपरिक भोज में शामिल होने से पहले उनका औपचारिक स्वागत किया जाता है और वल्ला सदा के दौरान केले के पत्तों पर 60 से ज्यादा पारंपरिक व्यंजन भी परोसे जाते हैं। और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल।
0: इंडियन जेवलिन थ्रोअर्स आशीष यादव एंड टी धरनीधरन अलोंग विद डिस्कस थ्रोअर अमरनाथ कंबोज सिक्योर प्लेसेस इन द फाइनल राउंड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव इवेंट्स एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप इन यूजीन यूएसए द फाइनल्स विल बी प्लेड ऑन संडे।
1: भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यों वाली जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में दो खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। मिडफील्डर कैदम शेलेमा चानू टीम की कप्तानी करेंगी। मुख्य कोच टिम हाइट के निर्देशन में टीम इस टूर्नामेंट की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है।
0: In on to some business news, benchmark domestic equity indices ended in the positive zone for the second straight session today. The Sensex gained 374 points or nearly 0.5% to close at 78,955. The Nifty rose marginally by 11 points to settle at 24,636.
1: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती या फिर जन्मदिन।
2: आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी

0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी का स्मरण कर रहे हैं। उनकी मृत्यु 6 अगस्त 1925 को हुई थी। राष्ट्रगुरु के रूप में लोकप्रिय बनर्जी ने 1876 में ब्रिटिश भारत में अग्रणी राष्ट्रवादी संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी।
1: सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने 1870 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। इस फैसले के विरोध में मुकदमा जीतने के बाद सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन जल्द ही ब्रिटिश शासन ने उन्हें गलती का हवाला देते हुए बर्खास्त कर दिया और इस बार उनकी अपील को ब्रिटिश अदालतों ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया, जो पहला अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। वे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के तुरंत बाद उसके सदस्य बनाए गए। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का मुखर विरोध किया।
0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी आंदोलन में सबसे आगे थे। उन्होंने पूरे बंगाल और भारत में विरोध प्रदर्शनों, याचिकाओं और व्यापक जन समर्थन का आयोजन किया, जिसने आखिरकार अंग्रेजों को बंगाल के विभाजन के फैसले को वापस लेने पर मजबूर कर दिया।
2: Yes, and we are also remembering M. Night Shyamalan, who is an Indian-born American filmmaker best known for The Sixth Sense, Unbreakable and The Signs. He is famous for writing and directing psychological thrillers and supernatural horror movies that feature unexpected plot twists. He rose to global fame with The Sixth Sense, which earned 6 Academy Award nominations, including Best Director, Best Original Screenplay. Let's hear a dialogue from that movie.
3: I want to tell you my secret now. I see dead people.
4: In your dreams? While you're awake? Dead people like in graves and coffins?
3: Walking around like regular people. They don't see each other. They only see what they want to see. They don't know they're dead.
4: How often do you see them?
3: All the time.
5: King of supernatural thrillers, Manoj Knight Shyamalan, definitely at his best. और दोस्तों, आज ही है जन्मदिन उमेश मेहरा का, जो भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। 1980 और 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई यादगार फिल्में उन्होंने दी, जैसे अशांति, मुजरिम गुरु और यार गद्दार। खिलाड़ी श्रृंखला की जो फिल्में थी अक्षय कुमार की, उनकी उन तीन फिल्मों को उन्होंने ही निर्देशित किया। सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी। 1998 में उन्होंने किला में अनुभवी अभिनेता दिलीप कुमार को निर्देशित किया, जो उनकी आखिरी फिल्म कहलाती है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की कुछ फिल्मों से ये यादगार गीत।

भारतीय फिल्म निर्देशक, अभिनेता, लेखक, निर्माता है, जिनका आज जन्मदिन। और हिंदी सिनेमा के लिए म्यूजिकल ड्रामा रॉक ऑन, स्पोर्ट्स ड्रामा काईपोचे, म्यूजिकल फितूर और एक बड़ी प्राकृतिक आपदा पर आधारित फिल्म केदारनाथ और सोशल रोमांटिक ड्रामा चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए उन्हें जाना जाता है। और आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्मों से ये कुछ यादगार नगमे।

0: Yes, you're listening to a track from the movie Rock On. And moving on, Alfred Lord Tennyson, like we were mentioning in the beginning of our program, was born on this day in 1809. He was a legendary English poet who served as official poet laureate of the United Kingdom for most of Queen Victoria's reign. Regarded as the chief representative and defining voice of the Victorian era in literature, he remains one of the most frequently quoted writers in the English language. He was known for his melodious style and renowned for his exquisite command of rhythm, verbal music and rich imagery.
1: जी हाँ, बिल्कुल. लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, कौन भूल सकता है उन्हें. द लोटस ईटर्स उनकी एक बड़ी मशहूर जो कविता है. एक द्वीप पर पहुंचते हैं लोग और फिर क्या क्या होता है वहाँ, ज़रूर पढ़ी होगी छात्र जीवन में हमारे बहुत से श्रोताओं ने. और दोस्तों, अब हमें कहना पड़ रहा है कि वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का. आज्ञा दीजिए मुनीश शर्मा और अभिषेक मुखोपाध्याय को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की. दोबारा अगर आप सुनना चाहें हमें तो लॉग ऑन कीजिए वेबसाइट newsonair.gov.on और दीजिए अब आप हमें आज्ञा.
0: नमस्कार.

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் நேயர்கள் இதுவரை ஆர். பிரேமலதா, ஆர். மாலினி ஆகியோர் பாடியுள்ள பக்தி பாடல்களை கேட்டீர்கள். ஆர். சதீஷ்குமார் அவர்கள் வயலின், தில்லைஸ்தானம் ஆர். சூரிய நாராயணன் அவர்கள் மிருதங்கம். இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50

0: लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। न्यायालय की खंडपीठ ने तेजपाल को पद पर रहते हुए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: நேரம் 6:05 ஆகாஷ்வாணி நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட். நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்பதற்கு முன்

0: முப்பதுக்கு கண்ட்ரி வைட், 9:45 இன்சைட்ஸ், 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்ட் நியூஸ் நிகழ்ச்சிகள் டெல்லி அஞ்சல், 10:30 வெஸ்டர்ன் மியூசிக், 11:40 திரைகாணம். நள்ளிரவுக்கு பின் 12:10 இரவின் மடியில், 1:10 நினைவில் நின்றவை, 2:10 நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, 3:10 இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் பண்டிட் ராஜேந்திர கண்டல் அவர்களின் பாட்டு இடம்பெறும். தொடர்ந்து சஞ்சய் கபிரோய் அவர்களின் சரோட் இசை கேட்கலாம். அதிகாலை 4:10 பொங்கும் மங்கலம், ஐமிச்சேரி வி சங்கர் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்கலாம். வன்னியக்குளம் வி சி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் தவில். 5:10 புலரும் பொழுது, 6:10 தேனிசையில் பக்தி பாடல்கள் ஒலிக்கும். 7:15 திரை இசை, 7:30 ஆர்ட் செவேரே செய்தி தொகுப்பு டெல்லி அஞ்சல், 8:30 திரைக்காணம். நாளை காலை 9:00 அரங்கிசை, வியாசர் பாடி ஜி கோதண்டராமன் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்கலாம். வில்லியனூர் கே களியமூர்த்தி அவர்கள் தவில். நாளை பிற்பகல் 1:10 இசைமல நிகழ்ச்சியில் என் வி பாபு அவர்களின் ஹார்மோனிய இசை கேட்கலாம். ஸ்மிருதி ஸ்ரீராம் அவர்கள் வயலின், களக்காடு கே ஆர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் மிருதங்கம். 2:30 திரைக்காணம். நாளை மாலை 5:00 அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் அபிராம ஜி போடே அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். பி மிருதுலா அவர்கள் வயலின், டி நிக்ஷித் அவர்கள் மிருதங்கம். நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்டோம். தொடர்கிறது விஸ்லேஷன் டெல்லியிலிருந்து.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் சேவா பிரபாக் கி பிரஸ்துதி விஸ்லேஷன்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियाँ हैं, बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताएं और जलवायु परिवर्तन। ऐसे में ऐसे ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है जो स्वच्छ भी हो, भरोसेमंद भी हो और लगातार बिजली उपलब्ध करा सके। यही कारण है कि दुनिया में एक बार फिर परमाणु ऊर्जा की ओर ध्यान बढ़ रहा है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत स्वच्छ तो हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता मौसम और समय पर निर्भर करती है। इसके विपरीत परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2400 घंटे लगातार बिजली उपलब्ध करा सकते हैं, इसलिए इन्हें बिजली व्यवस्था की एक विश्वसनीय आधारशिला माना जाता है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई स्तरों पर एक साथ काम कर रही है। एक ओर शांति अधिनियम के माध्यम से कानूनी और नीतिगत ढांचे को आधुनिक बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकियों के विकास और नई पीढ़ी के रिएक्टरों पर निवेश बढ़ाया जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ईंधन सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि हाल के वर्षों में किस प्रकार भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई दिशा मिली है और इस क्षेत्र में हुई प्रमुख उपलब्धियां भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को किस प्रकार मजबूती प्रदान कर रही है। श्रोताओं, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम देश के परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला बना। इसके बाद संशोधनों के माध्यम से सरकार ने इस क्षेत्र में सरकारी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं, तकनीकी क्षमताओं और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों में तेजी से बदलाव आया है। ऐसे में आवश्यकता महसूस की गई कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े विभिन्न प्रावधानों को एक आधुनिक और व्यापक कानूनी ढांचे में समाहित किया जाए। इसी सोच के साथ शांति अधिनियम 2025 लाया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
3: भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो देश के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की वर्ष 2024-25 में हिस्सेदारी लगभग 3% रही, जबकि देश की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8.78 गीगावाट है। सरकार का लक्ष्य स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विकसित रिएक्टरों के माध्यम से वर्ष 2031-32 तक 22 गीगावाट से अधिक की क्षमता विकसित करना है। वहीं दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि देश में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR के डिजाइन, विकास और तैनाती को बढ़ावा दिया जा सके। लक्ष्य ये भी है कि वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR विकसित किए जाएं। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लाया गया शांति अधिनियम 2025 भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है। इसके तहत नियामकीय निगरानी के अंतर्गत निजी कंपनियों को

0: परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सीमित भागीदारी की अनुमति दी गई है। वे परमाणु बिजली संयंत्रों के संचालन, बिजली उत्पादन, उपकरण निर्माण और निर्धारित सीमा तक परमाणु ईंधन निर्माण जैसी गतिविधियों में भाग ले सकेंगी। हालांकि संवेदनशील गतिविधियां केंद्र सरकार या उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगी। अधिनियम में परमाणु ऊर्जा और विकिरण से जुड़ी गतिविधियों के लिए लाइसेंस तथा सुरक्षा स्वीकृति की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB को वैधानिक दर्जा देकर नियामक व्यवस्था को और सशक्त बनाया गया है। इसके साथ ही परमाणु क्षति से जुड़े दायित्व, मुआवजा, दावों के निपटान और अपील की प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित स्वरूप दिया गया है। स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण क्षेत्रों में परमाणु तथा विकिरण तकनीकों के उपयोग के लिए भी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था बनाई गई है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: श्रोताओं, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कोई अल्पकालिक योजना नहीं बल्कि 6 दशकों से अधिक समय में विकसित हुई एक दीर्घकालिक रणनीति का परिणाम है। सीमित यूरेनियम संसाधनों और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया। इसकी खास बात ये है कि हर चरण अगले चरण की नींव तैयार करता है। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली उत्पादन किया जाता है, वहीं दूसरे चरण में उसी प्रक्रिया से प्राप्त ईंधन का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में किया जाता है। इसके बाद तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडारों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी दूसरे चरण की दिशा में भारत ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली बार क्रिटिकलिटी प्राप्त की। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कि इस रिएक्टर में पहली बार नियंत्रित और सतत परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हुई। इसके साथ ही भारत ने अपने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में औपचारिक रूप से प्रवेश कर लिया है। लेकिन आखिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है और इसे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है, इस विषय पर आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया।
2: एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी में हम लास्ट अबाउट 30 ईयर्स उसी कल्पाकम में टेस्ट कर रहा था। उस अनुभव का बेसिस में ये हम बिल्ड किया है। यूजुअली आप एक एटॉमिक रिएक्टर लिया तो वो एटॉमिक रिएक्टर से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बट इस रिएक्टर में एक इम्पोर्टेंट चीज है वो वर्ड ब्रीडर। ब्रीडर का मतलब किसी चीज को नया पैदा कर सकता है ना, तो उस तरह से फ्यूल को ये पैदा करता है, वेस्ट को पैदा नहीं करता है। इस रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन फास्ट तरीके से निकलेगा। इसके कारण वो क्या करेगा, ये रिएक्टर के बाहर एक कवच के रूप में हम किसी नॉन फिसाइल मटेरियल को हम रखेंगे, लाइक थोरियम को हम रख सकता है, उसमें ये फास्ट न्यूट्रॉन टकरा के उसको फ्यूल बन, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एक विशेष मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल होने के बाद अपनी आप एक चेन रिएक्शन में उसे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, वही है क्रिटिकलिटी। इंडिया का एक अपनी आप एटॉमिक पावर का प्लान है, उस प्लान में 3 स्टेज बोलेगा, ये सेकेंड स्टेज है। ये स्टेज बहुत क्रिटिकल है, इसमें हमको कामयाब हो गया तो होगा, पक्का होगा, मुझे यकीन है। सो कामयाब होने के बाद हम देखा तो स्टेज 3 में हम इंडिया में अवेलेबल है थोरियम, वो थोरियम को हम यूज कर सकता है। थोरियम बहुत सेफ विषय है, तो ये एटॉमिक पावर प्रोड्यूस करने का थोरियम यूज किया तो बहुत सेफ होगा। एंड सेकेंड वो पूरा की पूरा इंडिया में अवेलेबल, सो इसका मतलब दैट हमको एक एनर्जी सॉवरनिटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगा।
1: श्रोताओं, भारत के पास यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, जबकि थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक भारत के पास है। भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इसी सोच पर आधारित है कि भविष्य में इन विशाल थोरियम संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। आइए इस विषय पर वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन की राय सुनते हैं।
2: लास्ट 20-30 वर्ष में एटॉमिक पावर के ऊपर एक नेगेटिव व्यू था, बट अभी पेट्रोलियम एंड कोल का ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट देख के बहुत लोग ये बोलने लगा दैट हम नया दौर पर नया दृष्टिकोण से एटॉमिक पावर को देख, तो एक एटॉमिक पावर ग्रीन एनर्जी है, इसका मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग करने वाला चीज को नई पैदा कर। एंड हम थर्ड स्टेज दैट इज थोरियम यूज करने लगा तो इवन एटॉमिक सेफ्टी का इश्यू बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो फ्यूचर में आई थिंक सर्टेनली ये एटॉमिक पावर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया में, एंड बिकॉज वी हैव थोरियम इन ह्यूज रिजर्व, बहुत ज्यादा मात्रा में थोरियम इंडिया में है, तो फ्यूचर में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन एटॉमिक पावर प्ले करेगा।
1: श्रोताओं, आने वाले वर्षों में ऊर्जा की मांग और अधिक बढ़ने का अनुमान है और ऐसे समय में पश्चिम एशिया और रूस

0: यूक्रेन जैसे वैश्विक संघर्षों ने ये दिखाया है कि ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अनेक देश परमाणु ऊर्जा को एक दीर्घकालिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। वर्ष 2023 में आयोजित COP28 सम्मेलन में 20 से अधिक देशों ने वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कम से कम 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई थी। भारत भी अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लगातार विस्तार दे रहा है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। इस समझौते के अंतर्गत भारत की शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के कुल यूरेनियम संसाधनों का 1/3 से अधिक हिस्सा है। ऐसे में ये व्यवस्था भारत के बढ़ते परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ईंधन सुरक्षा को मजबूत करेगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी और सुरक्षा प्रावधानों के तहत की जाएगी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG की सदस्यता के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया है। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक है अलका सिंह।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 31,773,000,00,000 रूप्यकाणां राष्ट्रिय परिपत्र जैवोर्जा योजनायै स्वीकृतिः प्रदत्ता। आर्थिक विषयक मन्त्रिमण्डल समित्या गुवाहाटी नगरस्य बेहाराचर्यालीतः तेजपुरं यावत् चतुष्पथीय मार्ग निर्माणाय प्रख्यापितम् अनुमोदनम्। संसदा 2023 वित्तीयवर्षयोः अतिरिक्त व्ययार्थं 45,000,00,000 रूप्यकाणां विनियोग विधेयकं पारितम्। मुंबई उच्च न्यायालयेन यौनोत्पीडन प्रकरणे तहलका संस्थायाः पूर्व संपादकाय तरुण तेजपालाय 10-वर्षात्मकः कठोर कारावास दण्डः श्रावितः। अपि च कुन्तकक्षेपकौ आशीष यादवः टी धरणीधरणः अपि च चक्रक्षेपक क्रीडिका अमानत कम्बोजः विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 क्रीडास्पर्धायाः अन्तिम चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य गोबरधन जैवोर्जा योजना 31,773,00,000 रूप्यकाणां व्ययेन पारिता। येन 150,000 नववृत्त्यवसराः भविष्यन्ति, सहैव कृषि गोमयादि अपशिष्टेभ्यः स्वच्छेन्धनं निर्मास्यते। एषा योजना अग्रिमं 10 वर्षं यावत् सेत्स्यति। अनेन सहैव असमे प्रायः 8,000,00,000 रूप्यकाणां व्ययेन 35,100 किलोमीटर दीर्घस्य चतुष्पथ राजमार्गस्य निर्माणाय अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता। संसदा अद्य 2023 विनियोग विधेयकं पारितम्। राज्यसभया विचारणानन्तरम् एतत् विधेयकं लोकसभायै प्रत्यर्पितम्। लोकसभया एतत् पूर्वमेव पारितम् आसीत्। अस्मिन् विधेयके 2023 वित्तीयवर्षे भारतस्य सञ्चितनिधेः स्वीकृतराशिभ्यः अतिरिक्तानां व्ययानाम् अधिकृतस्वीकृतेः प्रावधानमस्ति। जम्मू कश्मीर विषये सदने आशंकाः शमयन्ति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन अवदत् यत् 70+300 अनुच्छेदस्य विलोपनात् परं केन्द्र सर्वकारेण जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशाय महती वित्तीय प्रशासकीय सहायता प्रदत्ता। सा न्यवेदयत् यत् जम्मू कश्मीर आरक्षक बलस्य वेतनानां निवृत्ति वेतनानां च सम्पूर्णः भारः केन्द्र सर्वकारेण उह्यते। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् अनुच्छेदस्यास्य निरसनेन पुनरेकवारं सिद्धम् अभवत् यत् पाकाकृत भूभागेन सह

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. हमेशा की तरह हम हाजिर हैं कारोबारी खबरों को लेकर और हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रकाश चावला. प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट. सेंसेक्स गेन्स ओवर 350 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 24,636. Lok Sabha passes a taxation and other laws amendment bill 2026 and global crude oil prices rise.
1: Gharelu share bazar mein pramukh suchkank labh ke sath band hue. Sensex 350 ank se adhik uchla. Nifty 24636 darj hua. Lok Sabha ne karadhan aur anya kanun sanshodhan vidhyak 2026 ko parit kiya aur antarrashtriya bazar mein kacche tel ke dam badhe.
0: And before we take our main stories in detail, here is our disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब घरेलू शेयर बाजार. लगातार दूसरे दिन घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी का सिलसिला जारी रहा और प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक यानी लगभग 0.5% बढ़त के साथ 78,955 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंकों की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ. विस्तृत बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.4% से अधिक नुकसान में रहा, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended in the positive zone for the second straight session today. Sensex gained 374 points or nearly 0.5% to close at 78,955. Nifty rose marginally by 11 points to settle at 24,636. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dipped over 0.4%, while the small-cap 100 index added nearly 0.5%. After opening higher, Sensex maintained a positive momentum throughout the session. Meanwhile, Nifty traded in a narrow range, recovering from the slight dips witnessed during the intraday trade.

रहे सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 16 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे। नुकसान उठाने वाली कंपनियों में सबसे प्रमुख रही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, जिसे 4% का घाटा हुआ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर 2% से अधिक नीचे आकर बंद हुए। इंडिगो को लगभग 1.5% का नुकसान हुआ। उधर लाभ उठाने वालों में प्रमुख कंपनी रही रिलायंस, जिसके शेयरों में 3.4% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 2.5%।

0: Energy gained over 1.1%. In contrast, realty dipped over 1.4%, services shed 1.1%, and utilities lost over 1%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,161 companies declined, 2,117 companies advanced, and 215 companies remained unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 10 पैसे कमजोर हुआ 95 रुपए 22 पैसे के स्तर पर बंद हुआ प्रकाश जी बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे लगातार दूसरे सत्र में आज तेजी देखने को मिली है बाजार में क्या प्रमुख कारण रहे
2: देखिए मनोज जी ये ना एक तरह का मार्केट में सीमित दायरे में काम हो रहा है
1: जी
2: कई दिनों से ये काम हो रहा है और आज भी जो है वो मार्केट ग्रीन में बंद हुई है लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि जो मार्केट की जो डेप्थ है या मार्केट की जो डेप्थ बोलते हैं या ब्रेड्थ बोलते हैं
1: जी
2: वो नेगेटिव में रही आप लोग अपने रीड आउट में बोल रहे हैं
1: जी
2: तो ये मार्केट में एक सीमित दायरा हो रहा है इसमें शफलिंग होती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कई प्रॉफिट बुकिंग भी होती है और मार्केट ये सीमित दायरा हमारी भारतीय मार्केट में काफ़ी काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये ऐसा ही रहने वाला है
1: जी जी जी
2: इसके कई कारण हैं हम आपको बता सकते हैं लेकिन फिलहाल ये सीमित दायरा ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें कोई गिरावट भी कोई एक सीमित दायरा है निफ्टी में अगर देखें तो 23,800 से लेके 24,500-26,000 तक जैसे अब कुछ है ये इसी 800,000 के पॉइंट में रहता है
1: जी
2: तो ये सीमित दायरा है उसके कई कारण हैं और कुछ हद तक ये राहत मिल रही है कि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस था काफ़ी हद तक उसको वो निदान की तरफ जा रहा है
0: प्रकाश चावला जी वी ऑल्सो सॉ दैट द PSU banks advanced by 2%. How is that linked to what the RBI Monetary Policy Committee's decision about leaving repo rates unchanged at 5.25%? Bearing in mind that there are inflation headwinds coming our way, especially what's happening in West Asia, as you mentioned now. PSU banks, their first quarter results, do you think that's a fundamental reason why this index actually went up? Is there any linkage to what the central bank actually made the announcement about?
2: Well, today's movement in PSU banks or banks for that matter, I don't think it has much to do with the policy which was unveiled yesterday. The policy, as you said, retained the benchmark interest rates at I think 5.25%, what is called repo rate. Now, RBI governor himself raised this concern that the inflationary headwinds are there, still there, because of global uncertainties and also because of some deficit that could be there in the monsoon rains. So those concerns are there. Today's movement, I don't think it could be a shuffling, reshuffling of the portfolio. Some profit booking might be there. But I don't think it has got much to do with the policy, so to speak.
1: आपने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की चर्चा की एक खबर है FCNR से जुड़ी हुई साथ ही रुपए से जुड़ी हुई पहले श्रोताओं को हम उसकी जानकारी देना चाहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि FCNRB योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा की ताज़ा आवक में उत्साहजनक वृद्धि हुई है इससे घरेलू अर्थतंत्र में तरलता बनाए रखने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि इस योजना को समय से पहले बंद किए जाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है रुपए की मजबूती से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में रुपया मजबूत होगा उन्होंने ये भी कहा कि रुपए की स्थिति का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है और केंद्रीय बैंक अपनी ओर से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है
3: The conflict de-escalates, it is quite possible that the rupee may strengthen. 1 month or so, it has strengthened from 97 levels now to. And our policy has always been that the markets determine prices, level, and the band. We don't pursue. We only target, we only intervene in case there is an excessive volatility. There are speculative pressures that are getting built in. And it will be our endeavor that trajectory for rupee remains orderly and there is no

0: Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees. Briefing the media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said this will create 1.5 lakh jobs. Gobardhan marks a defining moment in India's clean energy journey.
1: आइए आगे बढ़ें। सरकार ने ऑनलाइन प्रकाशित हो रहे एक फर्जी ज्ञापन का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि यह ज्ञापन सर्वोच्च न्यायालय और वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। फर्जी ज्ञापन में कथित तौर पर जांच के दायरे में आए व्यक्तियों को वित्तीय सत्यापन और संपत्ति निरीक्षण के लिए अपने निजी बैंक खाते में धनराशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह ज्ञापन फर्जी है और इसका सर्वोच्च न्यायालय या वित्त मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोई भी कार्रवाई करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऐसे ज्ञापनों की प्रामाणिकता की पुष्टि करें। यहाँ पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, देश में फर्जीवाड़े, डीप फेक और कह लें इस तरह के जो विभिन्न तरह के असली दिखने वाले विज्ञापन कह लें, ज्ञापन कह लें, खबरें कह लें, प्रसारित होते हैं और उसमें आम लोग फंस रहे हैं, उससे निपटने का क्या उचित उपाय हो सकता है और किस तरह उससे बच सकते हैं लोग?
2: साइबर सिक्योरिटी जो है नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं
1: जी,
2: अपना सारा फाइनेंशियल सेक्टर है, हमारा UPI पेमेंट सिस्टम है और हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी में RBI के साथ मिलके और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री, हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं इनके, अभी मैंने मालूम किया कि काफ़ी जगह पे साइबर पुलिस स्टेशन बने हुए हैं
1: जी,
2: तो जो साइबर पुलिस स्टेशन बने हुए हैं उनको और इक्विप करना पड़ेगा। जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उनको आप मॉडर्न तरीके से आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये जो साइबर जो थीव्स होते हैं वो
1: जी,
2: आप हैकर्स मतलब वो दे आर हेड ऑफ यू, तो इतना ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए तो ये तो एक तरह का, अगर आपने सुरक्षा तो चाहिए ना, फाइनेंस में अगर जाना है या
1: जी,
2: किसी
1: जी,
2: भी गवर्नेंस फील्ड में, तो नागरिकों की सुरक्षा, हम लोग भोले वाले लोग हैं हमारे देश में,
1: बिल्कुल,
2: तो उनको आप इस तरह साइबर ठगी के अगर शिकार बन जाएं तो अच्छी बात नहीं
1: है। बिल्कुल।
0: Moving on to the crude oil market now, global crude oil prices rose today amid market caution over whether talks between Iran and Oman will restore flows through the Strait of Hormuz, while reports of attacks on Saudi tankers in the Red Sea and the Gulf of Aden renewed supply tensions. Brent crude was trading 1% up at $80.23 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading over 0.8% higher at $75.86 per barrel when reports last came in. What is this deal about between Iran and Oman? It is seen as a temporary deal where there will be no fees or toll that is to be charged. And how is this being linked to the deal between Iran and the U.S. Vis-a-vis the MOU?
2: Well, it's a part of the entire Iran-U.S. deal. It's an important component because at the center right now, at the center of the US-Iran deal is the reopening and restoring the traffic, ship liners traffic to normal, to normalcy. And on the one side of the strait is the Iran, other side is Oman. So Oman is an important stakeholder. So in Oman, that's how the administration, they are trying to see what kind of mechanism can be worked out so that this peace deal is really worked out.
1: आइए श्रोताओं आपको लिए चलें कार्यक्रम के अंतिम चरण में सराफा बाजार। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के रुख में थोड़ा सा अलग अलग रुख देखा जा रहा था। एक ओर जहां 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.4% बढ़त के साथ 1,49,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, वहीं चांदी 0.6% कमजोर होकर 2,27,030 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से प्रकाश जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
2: शुक्रिया।
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end on a positive note. Sensex gains over 350 points. Nifty settles at 24,636. Lok Sabha passes a taxation and other laws.

0: Amendment Bill 2026 and global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगर पालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा का समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता को सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल

के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानवड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर

ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीष शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह

2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सदस्य डॉ एम थंबीदुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉ सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएम डीके सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवाड़ी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारालू हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी

0: करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका यह व्यवहार उचित नहीं है, यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि UPI लेनदेन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है, जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: நேயர்கள், இதுவரை சன்செட் சமீக்ஷா. நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் குறித்த ஹிந்தி விமர்சனம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். அடுத்த அறிவிப்பு தொடர்கிறது. நேரம் 8:15. ஆகாஷ்வாணி நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட்.
2: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1

0: மெகாஹெர்ட்ஸ் ஆகாஷ்வாணி சென்னை எஃப்எம் கோல்டு.
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

இப்படி சூடு.

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் திரைகாணம் நிறைவு பெறுகின்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1446 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है. क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1446 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी. असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति. लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई. मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण. केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया. झारखंड और

0: केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
1: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, आसाम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
2: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
3: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
4: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
1: 19 लाख हाउस होल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
2: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
1: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
3: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
5: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई।

0: न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरला में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves Gobardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to 4-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test fires medium-range Agni-4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Kerala. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2020.

0: கண்ட்ரி வைட்.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए बाढ़ प्रबंधन और मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम लेकर मैं मनोज पाठक हाजिर हूँ। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, देश भर में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है और कुछ स्थानों पर तो इतनी बारिश हुई और स्थितियां विकट हो चली हैं। ऐसे में बाढ़ और मॉनसून की चुनौतियां कैसे हम अपने नुकसान को न्यूनतम करें और कठिन आपदा से किस तरह उबरें, इसी विषय पर आज हम इस अंक में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जाने माने इस क्षेत्र के आपदा विशेषज्ञ प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी को। प्रोफेसर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि मॉनसून की प्रवृत्तियों में हम एक बदलाव पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़ पहले भी आती थी, लेकिन अब की बाढ़ और अब की सुखाड़ दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हो जाती हैं। खासतौर से अभी जो देश के कई प्रदेशों में कई स्थानों पर

0: जो बारिश की बौछारें हुई हैं उनसे, बाढ़ की आपदा आ गई है, उनसे निपटने के लिए हमारी क्या सब तैयारियां हैं, पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, और कैसे हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में, इस पर चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे हम।
1: इस विषय में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हर साल मानसून में बारिश काफी ज्यादा मात्रा में जब होती है तो कई आपदाएं घटित होती हैं, और इसके लिए हम पहले से पूर्व तैयारी करते हैं। जून के महीने में सभी स्टेट्स जो हमारे हैं उनके रिलीफ कमिश्नर्स की केंद्रीय सरकार द्वारा एक मीटिंग गठित की जाती है, और उसमें ये सब चर्चा की जाती है कि आने वाले मौसम के क्या पूर्व अनुमान है और उसकी वजह से किस किस तरह की आपदाएं घटित हो सकती हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना है और निपटना या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहली तो तैयारी हमारी यही होती है कि मौसम विभाग हमें पूरे मानसून सीजन का जो भी सूचना देता है कि आने वाला इस बार का मानसून कैसा रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारियां की जाती हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी आपदाएं संभावित हैं और उसके लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत है। एक तो ये विभाग संबंधित तैयारियां हो जाती हैं जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग देखता है। दूसरी तरफ जनता की तैयारी भी, जन समुदाय की तैयारी भी बहुत जरूरी है। तो जनता को भी ये संदेश दिया जाता है कि समय समय पर कैसा मौसम होने वाला है, उसका क्या पूर्वानुमान है। जो हमारा भारत मौसम विभाग है वो हर हफ्ते अपनी मौसम की पूर्वानुमान की जो भी चेतावनियां होती हैं वो जिला प्रशासन और पब्लिक के साथ भी अपनी वेबसाइट के जरिए शेयर करता है। उन्होंने कुछ अपनी मोबाइल एप्स भी बनाई हैं, जैसे मौसम है, मेघदूत है, दामिनी है, जिनके जरिए भी ये सूचनाएं आपके मोबाइल तक पहुंचती हैं जिसके जरिए आप ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि विभागों को तैयार करना और उचित संसाधन उपलब्ध कराना और सबकी जो है जिम्मेदारी तय करना कि कौन क्या करेगा, और इसके साथ ही हमारा जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है उसको भी तैयार रखा जाता है 24/7 365 डेज कि कोई भी ऐसी आपदा की सूचना मिलने पर तुरंत कार्यवाही की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जीवन रक्षा की जा सके। तो इसमें सब तरह के उपाय किए जाते हैं, ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए, इवन लाइफ स्टॉक भी जो रिस्क पे होता है उसको और वाइल्ड लाइफ को भी बचाने की कोशिशें की जाती हैं।
0: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि हाल के दिनों में अपेक्षाकृत अन्य विकसित देशों से यदि हम तुलना करें अपने यहाँ, तो आपदा प्रबंधन लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज गति से सुरक्षित बचा लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ कहाँ कमियां रह जाती हैं जहाँ पर कि हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: देखिए, जहां तक मौसम के पूर्व अनुमान का सवाल है उसमें काफी तकनीकी तौर पर तरक्की की गई है। बहुत सारे डॉपलर वेदर रडार जो स्थानीय मौसम की सूचना हमें अच्छे तौर पर दे सकते हैं जिसपे रिलाई किया जा सकता है, का उपयोग किया जा रहा है। परंतु उसके बावजूद भी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट, लाइटनिंग, भूस्खलन या बाढ़, त्वरित बाढ़ जैसी आपदाएं होती हैं, वहां पर ये काफी मुश्किल होता है जानकारियां सही तरीके से हासिल करना। हालांकि हम कई मल्टी मॉडल्स को यूज करते हैं उसके बावजूद भी सही सूचना कई बार सही समय पर नहीं मिल पाती है। तो इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि पहले तो अगर सूचना है तो जैसा आपने बता रिक्तिकरण करते हैं हम कि जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां से जो लोग उसमें फंस सकते हैं उनको पहले निकाल लिया जाता है। परंतु उस सब के बावजूद भी कई आपदाएं ऐसी होती हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं और उसमें कैजुअल्टीज भी हो जाती हैं। तो उस समय में हमारे पास एक गोल्डन आवर्स या पीरियड का टाइम होता है जिस समय हम सबसे ज्यादा जाने बचाई जा सकती हैं। भूस्खलन हो, बाढ़ हो, इसमें बहुत कम समय हमें गोल्डन आवर्स की टर्म में मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा जाने बचाए जा सकते हैं। इसका दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि ये आपदाएं ऐसे क्षेत्रों में होती हैं जो दुर्गम गामी होते हैं जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होता है। वहां का ग्रेडियंट स्टीप होता है, वहां का एल्टीट्यूड हाई होता है और वहां पर जो आने जाने की व्यवस्थाएं हैं वो भी सीमित होती हैं। तो इस वजह से कई बार हम लोगों को एयर ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं रेस्क्यू में, इवैक्यूएशन में, और कई बार हम लोग जो स्थानीय टीम है जो हमारी स्टेट लेवल की भी आपदा मोचन बल होती है, जैसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है एनडीआरएफ की टीम, ऐसे एसडीआरएफ भी गठित की गई है और डिस्ट्रिक्ट्स को भी कहा गया है कि आप अपनी भी क्विक रिस्पांस टीम्स बनाइए। अब ऐसे में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हम पानी का अनुमान तो लगा रहे हैं परंतु उसके साथ जो मलबा आता है उसका अंदाज नहीं लगा पाते हैं, और मलबा कटाव बहुत करता है, और पानी के साथ जब मलबा आता है तो उसकी कटाव की जो बल शक्ति है वो कई गुना हो जाती है। तो आपने देखा होगा अक्सर कई जगह हमारे पुल के पुल बह जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, मकान बह जाते हैं, तो ये सब होता है और इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा कि हम लोगों को पहले से सूचित करें और उनको सुरक्षित स्थलों पर सुरक्षित मार्गों के जरिए ले के जाएं, तो ये सब तैयारियां पहले से करनी होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी सहभागिता और साझेदारी हमारे जन समुदाय की है। जब तक कि हम जन चेतना नहीं लाते और लोगों को जागृत नहीं करते कि आप आपदाग्रस्त क्षेत्र में अगर रह रहे हैं और काफी मात्रा में बारिश होने की संभावनाएं हैं, तो उस समय आप सचेत रहें, जागृत रहें और तैयार रहें, ताकि रात में होता क्या है कि जब बारिश होती है तो अंधेरा हो जाता है, लाइट भी चली जाती है, रास्ते नजर नहीं आते हैं, तो उसके लिए हम मॉक ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं। एक और चीज जो इस पे मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अब ये सावन का महीना जैसे चल रहा है तो हमारे कांवड़ यात्रा भी चल रही है, जिसकी तरफ हमारा कई बार

0: उनको भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जब लोग काफी भीड़ भाड़ में होते हैं या जैसे लाइटनिंग के इवेंट्स हो जाते हैं और वो मेटल के कलश लेके जाते हैं और
1: जी
0: पानी लेकर जाते हैं जो कंडक्टर्स के काम करते हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो एक तो हमारा जो पिलग्रिमेज सीजन है जो मई में शुरू होता है, नॉर्मली अक्टूबर में एंड होता है, और बीच में बड़ा सीजन हमारा जो है मानसून के समय में रहता है, तो ट्रैकिंग भी लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए भी जाते हैं और टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। तो इन सब की वजह से वहां पर ज्यादा संख्या एकत्रित हो जाती है, ज्यादा वाहन इकट्ठे हो जाते हैं और ज्यादा दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि बिजली गिरने से मरने की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं अपेक्षाकृत पहले की तुलना में, इससे बचने का क्या, आपने कहा कि कड़े वगैरह आकर्षित करने में होते हैं, ऐसे और कौन से उपाय हो सकते हैं? एक तो बाढ़ की स्थिति में बड़े पैमाने पर यदि पानी आ गया है नदियों के माध्यम से, बारिश के कारण से, तो जल जमाव होगा, उससे नुकसान अपनी जगह, लेकिन बिजली चमकने, बिजली गिरने से जो आपदाएं हो रही हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं?
0: कभी भी जब लाइटनिंग होती है उससे पहले थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, क्लाउड बस्ट इवेंट्स होते हैं, तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं। पहले तो आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं, आप ओपन एरिया में हैं जहां से लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकता है तो, और आउटडोर्स में हैं तो आपको नो डाउट एक क्लोज एरिया में चला जाना चाहिए, टर्डी हाउसेस में जाना चाहिए और वहां पे अपने बचाव के लिए कोशिश करें। एक जो है मिथ है लोगों को कि पेड़ तले चले जाएंगे तो लाइटनिंग का इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये उल्टा है। आप अकलौते बड़े पेड़ तले चले जाते हैं तो लाइटनिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही कई लोग छाता लेके चल जाते हैं मेटल के साथ, तो वो और हाइट बढ़ जाता है और मेटालिक एलिमेंट के साथ में और बिजली लगने की घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं। और इसके साथ ही अगर आपको, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है, कई लोग लेट जाते हैं जमीन पे, वो भी गलत है। तो उस समय में उकड़ू बैठ के दोनों हील्स इकट्ठे करके और नी में अपना हेड डालते हुए
1: जी
0: वो बैठ जरूरी होता है ताकि बिजली का प्रभाव कम से कम किया जा सके। अगर आपके पास में कोई ऐसा थल निकटतम जगह पर जहां पे कवर्ड एरिया है तो आपको उसमें जाना चाहिए और वहां पर अंदर ही रहना चाहिए जब तक ये क्लाउड बर्स्ट और लाइटनिंग के इवेंट्स रुक नहीं जाते, उसके 30 मिनट के बाद ही आप कहीं बाहर निकलना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान देना। परंतु अगर सपोज करो आप बहुत बड़े जंगल में जा रहे हैं ट्रैकिंग की, जैसे मैंने बात की, हो सकता है आप किसी वन क्षेत्र में है, तो वन क्षेत्र में है तो वहां के लिए ये चीज काम नहीं आएगी। तो वहां पे घना, जहाँ पे पौधों का समूह हो, तो उसके नीचे जाना चाहिए ताकि वो करंट जो है ना वो बॉडी ले ले नेचुरल, पर आपकी बॉडी के थ्रू नहीं जाए।
1: जी
0: तो क्लाउड का जो करंट का प्रवाह ग्राउंड में जाता है जब, तब आदमी उसका शिकार हो जाता है। जानवर हैं जैसे, जानवरों को भी हमें अंदर उसमें ले जाना चाहिए किसी बंद क्लोज्ड एरिया में, ओपन एरिया में। तो ये सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है।
1: यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि बुनियादी ढांचे के स्तर पर, साथ ही जो अर्बन हमारा प्लानिंग है उसके स्तर पर, यदि हम दिल्ली शहर को ही उदाहरण ले लें, एनसीआर एरिया को ले लें, तो बारिश के दिनों में थोड़ी सी बारिश बहुत अधिक संकट का कारण बन जाती है यातायात के लिए, पानी जमा हो जाता है। यानी हम इस आपदा से मानसून के सीजन में अपने ड्रेनेज सिस्टम को या स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें?
0: दिल्ली की आपने बात की, अगर आपको याद हो जुलाई 2023 में
1: जी
0: दिल्ली में बाढ़ का स्वरूप देखा गया और काफी मेहनत कश करके लोगों को बचाया गया। चेन्नई की बाढ़ 2015 दिसंबर की आपको याद हो, बेंगलोर में हुई, हैदराबाद में हुई, जहां शहरीकरण हो रहा है वहां जो आपने कहा कि जो हमारा जल निकासी का प्रबंधन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। जितने भी ड्रेनेजेज हैं पहले तो वो उस कैपेसिटी के नॉर्मली नहीं होते जितनी वहां पे पॉपुलेशन रिसाइड करती है, परंतु जो कैपेसिटी भी है, क्षमता है नालों की, वो भी पूरा काम नहीं करती है। अगर उसमें से मिट्टी, गर्दा, पॉलिथीन ये सब नहीं निकाले जाते और क्लीनिंगनेस मानसून से पहले अच्छे तरह से नहीं की जाती है, तो कई कारण बन जाते हैं कि जब बारिश का पानी को ना तो ग्राउंड फिल्ट्रेशन का टाइम मिलता है क्योंकि सारा कंक्रीटाइज हो चुका है हमारा शहरीकरण, और दूसरा जो पानी सरफेस से नालों में जा रहा है उसमें क्षमता कम हो जा रही है, तो और तीसरा हम लोग जो है अंडर पासिस बना रहे हैं, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं वहां पानी इनंडेशन हो जाता है, लोगों को अंदाजा नहीं लगता कि पानी का लेवल कितना है और लोग उसमें फंस जाते हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर लाइंस, ट्रांसफार्मर्स, पोल्स, इनमें करंट लगने का बहुत डर है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पानी की वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, करंट पानी में आ गया, तार गिर गई और कोई व्यक्ति उसकी टच में आ जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो

0: ऐसे में ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, और इंडेंटेशन हो गया और लीकेजेस करंट की हुई तो खतरा बढ़ जाता है। तो ना सिर्फ आवाजाही की व्यवस्थाओं में या पानी के इनंडेशन की वजह से सामग्रियों के खराब होने में, परंतु सबसे बड़ा खतरा जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लें तो अगर आपने अनप्लग नहीं किया बारिश के टाइम पे, लाइटनिंग के टाइम पे, तो वो उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जैसे हमारा मौसम खराब होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कम से कम यूज करें और उनको अनप्लग करके रखें। तो ये सब चीजें जो है एक समन्वय बनाने की जरूरत है सभी विभागों में और सभी व्यवस्थाओं में, और जनता की साझेदारी बहुत जरूरी है इसमें।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश जी, आपने बड़ी ही उपयोगी और आम जनता के समझ में आने लायक शब्दों में बताया कि हमें कहाँ नीतिगत स्तर पर काम करना है और कहाँ व्यक्तिगत स्तर पर सतर्क रहना है, ताकि मानसून की आपदा में अपना बचाव करने के लिए हम खुद सामने आ सके। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी श्रोतागणों का।
2: अभी आप सुन रहे थे बाढ़ प्रबंधन और मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के प्रभावी उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: has been deemed to be moderate. Why is that the case?
1: Well, that's because the core inflation does not include food and fuel. And if you take out food and fuel, the inflation is quite modest. So if you look at traditionally most central bankers' approach to inflation management policies, it is that if you look at the core inflation, which is without food and fuel, because food and fuel are seasonal and they fluctuate at a decent pace. And also they are prone to supply side pressures. So if you take food and fuel out, your core is fairly moderate. If you take out gold and jewelry, the core gets even more moderate. So therefore, the overall approach the RBI Monetary Policy Committee has been that since it is a supply pressure led inflation outlook, since the core inflation is moderate, and since even the core inflation has a good component of gold and jewelry that has given rise to the core, the RBI Monetary Policy Committee has decided to stay put with the current repo rate.
0: Well, thank you so much, AKB, for being with us on this program and talking to us in the most simplistic terms what the RBI policy decisions are and the outlook for the Indian economy as per RBI Governor Sanjay Malhotra. Thank you so much, Shri AK Bhattacharya, for being with us on this program.
2: You were listening to a discussion on RBI's policy decisions and the outlook for the Indian economy. The participants were A.K. Bhattacharya, economic analyst, and Arjun J. Chaudhary, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Insights. Namaskar. Akashvani Samachar ke saath main Jaya Bharti. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
4: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
3: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि यह योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमियों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने कहा कि सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र

0: विकसित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। यह सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। और खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चाहिला और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्ण प्रसाद गरागा की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 crore rupees टू द national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had already passed the bill when the House assembled at 2:45 p.m. After the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. Replying to the debate, Finance Minister Sitharaman said the government has sought approval for excess expenditure incurred during the financial year 2023. After completing the business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Earlier, both houses of parliament witnessed repeated adjournments following ruckus by opposition members over several issues. Amid opposition's uproar, the Lok Sabha passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 without any discussion. The legislation provides

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। मुख्य समाचार। भारत और इसराइल ने विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने ओडिशा में मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को 60 दिनों के लिए फिर से खोलने पर सहमति बनी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होगा। यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज किए, 2 तेल शोधन संयंत्रों पर निशाना बनाया। और भारत की 3 बैडमिंटन खिलाड़ी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर विचार विमर्श भी किया। भारत और सिंगापुर ने आज अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। ये समीक्षा नई दिल्ली में आयोजित भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श के 19वें दौर में की गई। बैठक में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप में शामिल 8 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की स्थिति पर भी चर्चा हुई। नई दिल्ली में जारी 5वें भारत रूस सेना भूमि प्रणाली उप समूह की बैठक के दौरान दोनों देशों ने आपसी विश्वास बढ़ाने और रक्षा औद्योगिक तथा तकनीकी सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य तकनीक सहयोग आयोग के तत्वाधान में आयोजित इस 4 दिवसीय बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह DCOAS CD&S ने किया। रूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के मुख्य बख्तरबंद निदेशालय के उपप्रमुख मेजर जनरल तुफेकची अलेक्जेंडर ने किया। पिछले महीने नई दिल्ली में आतंकवाद रोधी मामलों पर भारत रूस संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के अपने अनुभवों को साझा किया और हिंसक उग्रवाद कट्टरता तथा आतंकवाद वित्त पोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स

0: और शंघाई सहयोग संगठन सहित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के पास इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों की पुष्टि हुई। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो रहे हैं।
2: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके, उसकी चिंता करते हैं।
1: 2 दिन का ब्रिक्स वेव बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि बाजार का उद्देश्य फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, संगीत, डिजिटल मीडिया और उभरते कंटेंट फॉर्मेट में सहयोग का मार्ग तैयार करना है।
3: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, AI मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। विशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य 60 दिनों के लिए फिर से खोलने पर सहमति बन गई है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से समझौते को मंजूरी मिलनी बाकी है। एक रिपोर्ट।
4: समझौते के अनुसार जलडमरू मध्य में प्रवेश करने वाले जहाज ईरान के निकटवर्तीय मार्ग का उपयोग करेंगे, जबकि बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के निकटवर्तीय मार्ग का उपयोग करेंगे। कोई पारगमन शुल्क या सेवा शुल्क नहीं लगाया जाएगा और क्षेत्रीय पक्ष समुद्र में बारूदी सुरंगों को हटाने और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं में शामिल हो सकते हैं। समझौते को मंजूरी मिलने के बाद अमरीका और ईरान अपने शांति समझौता ज्ञापन के अनुसार जलडमरू मध्य फिर से खोलने और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही का प्रस्ताव तैयार करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: इसराइल की सेना ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में एक अभियान के दौरान हुए विस्फोट में उसके 2 सैनिक मारे गए और 4 अन्य घायल हैं। विस्फोट के कारणों की जांच जारी है। इसराइली सेना ने शुरुआत में उसे हिजबुल्ला की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी शहर तिबनिन पर इसराइली हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 12 अन्य लोग घायल हैं। यूक्रेन ने रूस के तेल भंडार को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि सेना ने रूस के बशकोर्तस्कान और यारकोस्कोस्ट क्षेत्र में तेल रिफाइनरियों पर हमला किया। एक रिपोर्ट।
5: हमले के बाद यारोस्लाव शहर के ऊपर घना काला धुआं देखा गया। प्रांतीय गवर्नर ने इस क्षेत्र पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। नष्ट किए गए ड्रोन के गिरे मलबे से तेल भंडारण टैंक क्षतिग्रस्त हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि वायु रक्षा प्रणाली ने यूक्रेन के 605 ड्रोन को रोक कर नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि हमलों में 3 लोग मारे गए। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले भी जारी हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि हमलों में 6 लोगों की मौत हुई है। विश्व दर्पण के लिए मैं जया भारती।
1: बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद का चुनाव इस महीने की 20 तारीख को होगा। बांग्लादेश के निर्वाचन आयोग ने आज इसकी घोषणा की। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवार 13 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 16 अगस्त को होगी, जबकि उम्मीदवार 18 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव

की आवश्यकता मोहम्मद शहाबुद्दीन के 24 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद पड़ी थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। 27 जुलाई को पीओजेके में तथाकथित विधायी चुनावों से पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़पें हुई। संयुक्त आवामी कार्रवाई समिति ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। ब्रसेल्स स्थित ईयू रिपोर्टर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं में लगातार बंद रहने से पत्रकारों और मानवाधिकार समूहों के लिए जमीनी स्थिति का आकलन करना मुश्किल हो गया है। खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चहला और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी अंतिम आठ में पहुंच गई है। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी विलिशेट्टी को हराया, वहीं अश्मिता ने मेजबान कोरिया की किम मिनजी को और रक्षिता ने जापान की मनामी सुइजू को पराजित किया। पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की जोड़ी को पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इसराइल ने विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने ओडिशा में मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को 60 दिनों के लिए फिर से खोलने पर सहमति बनी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होंगे। यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज किए, 2 तेल शोधन संयंत्रों को निशाना बनाया। और भारत की 3 बैडमिंटन खिलाड़ी कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Time is 11 PM. Coming up is the news in Hindi.
1: Namaskar. Akashvani Samachar ke saath main Shakti Singh. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई।

0: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 crore rupees टू the national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had already passed the bill. When the House assembled at 2:45 p.m. after the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. Replying to the debate, Finance Minister Sitharaman said the government has sought approval for excess expenditure incurred during the financial year 2023. After completing the business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Earlier, both Houses of Parliament witnessed repeated adjournments following ruckus by opposition members over several issues. Amid opposition's uproar, the Lok Sabha passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 without any discussion. The legislation provides tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Later, the lower house was also adjourned for the day. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu today. During their conversation, the two leaders reviewed sustained progress in India-Israel Special Strategic Partnership and reaffirmed their commitment to further strengthening the bilateral cooperation across various sectors for the mutual benefit of the two countries. Both the leaders also exchanged views on the recent developments in West Asia. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day tomorrow with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence and people from all walks of life united and fought a historic battle against British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Further, the Prime Minister highlighted the importance of strengthening these small and economically disadvantaged weaving families.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. हमेशा की तरह हम हाजिर हैं कारोबारी खबरों को लेकर और हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रकाश चावला. प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार,
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से.
0: Benchmark domestic stock market indices end on a positive note. Sensex gains over 350 points. Nifty settles at 24,636. Lok Sabha passes the taxation and other laws amendment bill 2026 and global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 350 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 24,636 दर्ज हुआ. लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we take our main stories in detail, here is our disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब घरेलू शेयर बाजार. लगातार दूसरे दिन घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी का सिलसिला जारी रहा और प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक यानी लगभग 0.5% बढ़त के साथ 78,955 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंकों की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ. विस्तृत बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.4% से अधिक नुकसान में रहा, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended in the positive zone for the second straight session today. Sensex gained 374 points or nearly 0.5% to close at 78,955. Nifty rose marginally by 11 points to settle at 24,636. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dipped over 0.4%, while the small-cap 100 index added nearly 0.5%. After opening higher, Sensex maintained a positive momentum throughout the session. Meanwhile, Nifty traded in a narrow range, recovering from the slight dips witnessed during the intraday trade.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 16 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे. नुकसान उठाने वाली कंपनियों में सबसे प्रमुख रही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, जिसे 4% का घाटा हुआ. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर 2% से अधिक नीचे आकर बंद हुए. इंडिगो को लगभग 1.5% का नुकसान हुआ. उधर लाभ उठाने वालों में प्रमुख कंपनी रही रिलायंस, जिसके शेयरों में 3.4% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

0: शेयर 2.5% मुनाफे के साथ बंद हुए.
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of the 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, PSU banks advanced over 2%, capital goods rose nearly 1.3%, and energy gained over 1.1%. In contrast, realty dipped over 1.4%, services shed 1.1%, and utilities lost over 1%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,161 companies declined, 2,117 companies advanced, and 215 companies remained unchanged.
0: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 10 पैसे कमजोर हुआ, 95 रुपए 22 पैसे के स्तर पर बंद हुआ. प्रकाश जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. लगातार दूसरे सत्र में आज तेजी देखने को मिली है बाजार में, क्या प्रमुख कारण रहे?
2: देखिए मनोज जी, ये ना एक तरह का मार्केट में सीमित दायरे में काम हो रहा है
0: जी,
2: कई दिनों से ही काम हो रहा है. और आज भी जो है वो मार्केट ग्रीन में बंद हुई है, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि जो मार्केट की जो डेप्थ है या मार्केट की जो डेप्थ बोलते हैं या ब्रेड्थ बोलते हैं
0: जी,
2: वो नेगेटिव में रही. आप लोग अपने रीड आउट में बोल रहे हैं
0: जी,
2: तो ये मार्केट में एक सीमित दायरा हो रहा है. इसमें शफलिंग होती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, कई प्रॉफिट बुकिंग भी होती है. और मार्केट ये सीमित दायरा हमारी भारतीय मार्केट में काफ़ी काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये ऐसे ही रहने वाला है.
0: जी जी जी,
2: इसके कई कारण हैं, हम आपको बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये सीमित दायरा है. ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें कोई गिरावट भी कोई एक सीमित दायरा है. निफ्टी में अगर देखें तो 23,800 से लेके 24,500-26,000 तक जैसे अब कुछ है, ये इसी 800,000 के पॉइंट में रहता है
0: जी.
2: तो ये सीमित दायरा है, उसके कई कारण हैं और कुछ हद तक ये राहत मिल रही है कि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस था काफी हद तक उसको वो निदान की तरफ जा रहा है.
1: प्रकाश चावला जी, वी आल्सो सॉ दैट द पीएसयू बैंक्स एडवांस्ड बाय 2%. हाउ इज दैट लिंक्ड टू व्हाट द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज डिसीजन अबाउट लीविंग रेपो रेट्स अनचेंज्ड एट 5.25%, बेयरिंग इन माइंड दैट देर आर inflation headwinds coming our way, especially what's happening in West Asia, as you mentioned now. PSU banks, their first quarter results, do you think that's a fundamental reason why this index actually went up? Is there any linkage to what the central bank actually made the announcement about?
2: Well, today's movement in PSU banks, or banks for that matter, I don't think it has much to do with the policy which was unveiled yesterday. The policy, as you said, retained the benchmark interest rates at I think 5.25%, what is called repo rate. Now, RBI governor himself raised this concern that the inflationary headwinds are there, still there, because of global uncertainties and also because of some deficit that could be there in the monsoon rains. So those concerns are there. Today's movement, I don't think it could be a shuffling, reshuffling of the portfolio. Some profit booking might be there, but I don't think it has got much to do with the policy, so to speak.
0: आपने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की चर्चा की, एक खबर है एफसीएनआर से जुड़ी हुई, साथ ही रुपए से जुड़ी हुई, पहले श्रोताओं को हम उसकी जानकारी देना चाहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि एफसीएनआरबी योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा की ताजा आवक में उत्साहजनक वृद्धि हुई है, इससे घरेलू अर्थतंत्र में तरलता बनाए रखने में मदद मिली है. उन्होंने कहा कि इस योजना को समय से पहले बंद किए जाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. रुपए की मजबूती से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में रुपया मजबूत होगा. उन्होंने ये भी कहा कि रुपए की स्थिति का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है और केंद्रीय बैंक अपनी ओर से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है.
3: The conflict de-escalates, it is quite possible that the rupee may strengthen. 1 month or so it has strengthened from 97 levels now to, and our policy has always been that the markets determine prices level and the

0: some more news, this time from the Civil Aviation Minister. K. Ram Mohan Naidu has debunked the claims stating that the government plans to blend ethanol with aviation turbine fuel ATF are completely false and irresponsible. In a social media post, Mr. Naidu today said that there is no such proposal. He said that ethanol and sustainable aviation fuel SAF are entirely different and should not be conflated. Mr. Naidu said that SAF is an internationally certified aviation fuel recognized by the International Civil Aviation Organization and adopted globally, which undergoes rigorous testing and meets stringent global safety standards. In more news, Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees. Briefing the media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said this will create 1.5 lakh jobs. Gobardhan marks a defining moment in India's clean energy journey.
1: आइए आगे बढ़ें. सरकार ने ऑनलाइन प्रकाशित हो रहे एक फर्जी ज्ञापन का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि यह ज्ञापन सर्वोच्च न्यायालय और वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है फर्जी ज्ञापन में कथित तौर पर जांच के दायरे में आए व्यक्तियों को वित्तीय सत्यापन और संपत्ति निरीक्षण के लिए अपने निजी बैंक खाते में धनराशि जमा करने का निर्देश दिया गया है पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह ज्ञापन फर्जी है और इसका सर्वोच्च न्यायालय या वित्त मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोई भी कार्रवाई करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऐसे ज्ञापनों की प्रामाणिकता की पुष्टि करें यहां पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे देश में फर्जीवाड़े डीप फेक और कह लें इस तरह के जो विभिन्न तरह के असली दिखने वाले विज्ञापन कह लें ज्ञापन कह लें खबरें कह लें प्रसारित होते हैं और उसमें आम लोग फंस रहे हैं उससे निपटने का क्या उचित उपाय हो सकता है और किस तरह उससे बच सकते हैं लोग
2: साइबर सिक्योरिटी जो है नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं
1: जी
2: अपना सारा फाइनेंशियल सेक्टर है हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम है और हमारा गवर्नेंस सिस्टम है तो उसमें साइबर सिक्योरिटी में आरबीआई के साथ मिलके और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं इनके अभी मैंने मालूम किया कि काफ़ी जगह पे साइबर पुलिस स्टेशन बने हुए हैं
1: जी
2: तो जो साइबर पुलिस स्टेशन बने हुए हैं उनको और इक्विप करना पड़ेगा जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उनको आप मॉडर्न तरीके से आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ये जो साइबर जो थीव्स होते हैं वो जी, जी. आप हैकर्स मतलब दे आर हेड ऑफ यू तो इतना ज्यादा होते हैं तो इसलिए तो ये तो एक तरह का अगर आपने सुरक्षित सुरक्षा तो चाहिए ना फाइनेंस में अगर जाना है या किसी जी, भी गवर्नेंस फील्ड में तो नागरिकों की सुरक्षा हम लोग भोले वाले लोग हैं हमारे देश में
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
2: तो उनको आप इस तरह साइबर ठगी के अगर शिकार बन जाए तो अच्छी बात नहीं है
1: बिल्कुल
0: Moving on to the crude oil market now. Global crude oil prices rose today amid market caution over whether talks between Iran and Oman will restore flows through the Strait of Hormuz, while reports of attacks on Saudi tankers in the Red Sea and the Gulf of Aden renewed supply tensions. Brent crude was trading 1% up at $80.23 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading over 0.8% higher at $75.86 per barrel when reports last came in. What is this deal about between Iran and Oman? It is seen as a temporary deal where there will be no fees or toll that is to be charged. And how is this being linked to the deal between Iran and the U.S.? Vis-a-vis the MOU?
2: Well, it's a part of the entire Iran-U.S. deal. It's an important component because at the center right now, at the center of the U.S.-Iran deal is the reopening and restoring the traffic, ship liners traffic to normal, to normalcy. And on the one side of the strait is the Iran, other side is Oman. So Oman is an important stakeholder. So in Oman, that's how the administration, they are trying to see what kind of mechanism can be worked out so that this peace deal is really worked out.
1: आइए श्रोताओं आपको लिए चलें कार्यक्रम के अंत

0: चरण में सराफा बाजार। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के रुख में थोड़ा सा अलग अलग रुख देखा जा रहा था। एक ओर जहां 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.4% बढ़त के साथ 1,49,340 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, वहीं चांदी 0.6% कमजोर होकर 2,27,030 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रहे थे। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से प्रकाश जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
1: शुक्रिया।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end on a positive note. Sensex gains over 350 points. Nifty settles at 24,636. Lok Sabha passes the taxation and other laws amendment bill 2026. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोबरधन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को भी पारित कर दिया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही ये विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों की पुष्टि की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू केंजरापू ने अकासा एयर और अलायंस एयर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसका उद्देश्य एयरलाइंस को अपने विमानों की संख्या बढ़ाने, संचालन को बेहतर बनाने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन तथा आर्थिक सहायता देना है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार कल मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 5 और 6 अगस्त के बीच रात में 10 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें मोहाली का एक फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल है। खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

சொல்லவா? கதையா சொல்லவா? பார்த்தா சொல்லவா?

0: சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जय

0: ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही ये विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र स्वदेश लाने के लिए हर संभव सहायता की है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने अकासा एयर और अलायंस एयर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसका उद्देश्य एयरलाइंस को अपने विमानों की संख्या बढ़ाने, संचालन को बेहतर बनाने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों की पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। यह कानून कल से लागू हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदाय को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने 5 और 6 अगस्त के बीच रात में 10 ठिकानों पर छापेमारी की जिसमें मोहाली का एक फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल है। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव रुतेंद्र टंडन और सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव ल्यूक गो ने की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। The Union Cabinet yesterday approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnav said, the Cabinet Committee on on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said, "The decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the

போயா இழிச்சவாயா?

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वस्त्र मंत्रालय आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। कार्यक्रम में अर्थ रूट थ्रेड ऑल डायड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि भारतीय कारीगरों के कौशल वैश्विक पहचान मिल सके।
2: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपने छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की

0: बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी संचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि की गई। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून कल से लागू हो गया। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से पुराने सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार कल मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद करागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகின்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சக்தி சிங். वस्त्र मंत्रालय आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी. इसके साथ ही राष्ट्रपति 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी. कार्यक्रम में अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है. वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया.
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी. अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी. जन जन जुड़ गया. अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया. मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है.
1: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि भारतीय कारीगरों के कौशल को वैश्विक पहचान मिल सके.
2: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपने छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वेरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं. हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं. हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना.
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है.
3: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है. अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम.
1: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया. इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों की पुष्टि हुई है. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों को पहचान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन तथा आर्थिक सहायता देना है. जनजातीय कार्य मंत्री

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बसंत मुखारी में सरोद वादन सुन रहे थे। कलाकार थे संजय कविराज। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय।
1: இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் நேயர்கள் இதுவரை சஞ்சய் கபிராய் அவர்களின் சரோட் இசை கேட்டீர்கள்.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சக்தி சிங். वस्त्र मंत्रालय आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। कार्यक्रम में अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि भारतीय कारीगरों के कौशल को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके।
2: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून कल से लागू हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, माहे, ओडिशा तथा दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र में गरज के साथ बिजली चमकने और मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और तेज बारिश की संभावना है।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके साथ ही वो चार स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। कार्यक्रम में अर्थ रूट थ्रेड, ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में

0: स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को निर्धन बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कलाकारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया, मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने, इससे संबंधित एक वीडियो बनाने और इस वीडियो को देश विदेश में साझा करने का आग्रह किया ताकि भारतीय शिल्पकारों के कौशल और शिल्प को वैश्विक पहचान मिल सके। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है, जिससे राज्य के आदिवासी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन और आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा तथा दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र में गरज के साथ बिजली चमकने और मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी आज तेज वर्षा होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।